0: यानंतर ठीक 6 वाजता दिल्ली केंद्रावरून हिंदीतून बातम्या सहक्षेपित केल्या जातील.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना. शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों से अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और पढ़ाने के नए तरीकों का इस्तेमाल करने का आह्वान किया है. राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने और उनके चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच और जिज्ञासा की भावना विकसित करने का आग्रह किया. राष्ट्रपति ने सभी समर्पित शिक्षकों के योगदान के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि वो ऐसी पीढ़ियों का निर्माण करते रहे जो देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं. उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें महान शिक्षक बताया. शिक्षक दिवस पर हर वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है. इस अवसर पर राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी. ये शिक्षक 27 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश और 6 केंद्रीय संस्थानों से चुने गए हैं. इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और प्राध्यापकों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे. दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है. कॉलेज की स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी. पिछले 100 वर्ष में इस संस्थान ने कई विद्वान, पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज चेन्नई के एक दिन के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वो इंडिया वॉल्स में शामिल होंगे. ये हृदय से जुड़ी बीमारियों के इलाज को बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है. ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है. हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं.
2: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की. इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई. अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
1: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ग्रस्त त्रिशूली बाजार इलाके से 3 और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है. इनमें 5 साल का एक बच्चा भी शामिल है. सुरक्षित निकाले गए भारतीयों की संख्या 169 हो गई है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 275 भारतीय अब भी लापता हैं. वहीं चीन से 1907 भारतीय सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं. उन्होंने बताया कि भारत ने नेपाल में बाढ़ के बाद अब तक लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है. भारत आगे भी नेपाल की जरूरत के अनुसार मदद जारी रखेगा.
3: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
4: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है. एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे.
3: And recovery efforts in the country.
1: महिला क्रिकेट में T20 एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा. ये मैच दुबई में रात 8 बजे से शुरू होगा. भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है. उधर विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का 3रा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा. इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रखे हैं. भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है. बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष डबल्स की जोड़ी आज चाइना मास्टर्स के सेमीफाइनल में मलेशिया की जोड़ी के साथ खेलेगी. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी मुंबई केंद्र अस्मिता वाहिनी 6:05 झाली आहेत। मंगल प्रभात या भक्ती संगीताच्या कार्यक्रमात सुरुवातीला ऐकूया श्री वैशंपायन गुरुजी यांनी पठण केलेलं श्री शनैश्चर स्तोत्र।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया। 48 शिक्षकों को आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। सरकार ने ISO टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल की अनुमति तथा कड़े सुरक्षा नियमों का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत संघर्ष समाप्त करने में यूक्रेन और रूस के साथ निरंतर संपर्क में है। संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका का सटीक आकार दर्शाने वाले नए विश्व मानचित्र को अपनाने के पक्ष में मतदान किया। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण अहमदाबाद में आज से शुरू और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने और चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
1: हर वर्ष 5 सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति, प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह अवसर राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों और शिक्षाविदों की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करता है। शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन को बदलते हैं, पीढ़ियों को दिशा देते हैं और समाज की नींव को मजबूत करते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संगठनों से हैं। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल शाम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षकों को बच्चों को 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और उन्हें हर क्षेत्र में सक्षम बनाने की दिशा में काम किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्ष में इस संस्थान ने कई विद्वान, पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज चेन्नई इंडिया वॉल्व सम्मेलन में शामिल होंगे। यह हृदय से जुड़ी बीमारियों का उपचार बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। उपराष्ट्रपति गिंडी में इंडिया वॉल्व पंजिका का विमोचन भी करेंगे। सरकार ने ISO टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल तक की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोलियम संशोधन नियम 2026 का मसौदा जारी किया है। इसमें आवेदन प्राप्त होने पर 7 कार्य दिवस में मंजूरी देने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार पेट्रोलियम से भरे या पेट्रोलियम के लिए इस्तेमाल होने वाले ISO टैंक कंटेनरों को बिना अनुमति आयात नहीं किया जा सकेगा। आवेदन पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करना होगा और इसके साथ जरूरी तकनीकी और सुरक्षा दस्तावेज जमा कराने होंगे। मंत्रालय ने मसौदे पर 30 दिन के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद नियमों में बदलाव किया जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल शुरू हो गया। सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर सुरक्षा और तैयारियां की जा रही हैं। आज मोटर कारकेड का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। यातायात पुलिस ने रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस और यूक्रेन के लगातार संपर्क में है। वॉर्सो में पोलैंड के विदेश मंत्री रादोस्लाव सिरोस्की के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि युद्ध का कोई विजेता नहीं होता।
5: India believes that endless war.
6: भारत का मानना है कि अंतहीन युद्ध समाप्त होना चाहिए और युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। हर अतिरिक्त दिन का अर्थ है अधिक मौतें, अधिक तबाही, दोनों देशों के लिए अधिक नुकसान और बाकी दुनिया के लिए अधिक लागत। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस चिंता को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया था। इसलिए हमारे प्रयास बातचीत और कूटनीति को बढ़ावा देने पर केंद्रित होने चाहिए।
0: विदेश मंत्री ने कहा कि भारत संघर्ष समाप्त करने में हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर रूस और यूक्रेन का दौरा करेंगे। दोनों का उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए शांति समझौते की कोशिश करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीका का वास्तविक आकार बेहतर ढंग से दिखाने वाले नए विश्व मानचित्र के पक्ष में मतदान किया है। 164 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया जबकि अमेरिका ने इसके विरुद्ध मतदान किया। 6 देश मतदान से अलग रहे। मर्केटर मानचित्र में अफ्रीका का आकार वास्तविकता से बहुत छोटा दिखाई देता है जबकि अफ्रीका ग्रीनलैंड से लगभग 14 गुना बड़ा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की आशंका है। लखनऊ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भी कई जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं।
8: राज्य में अयोध्या, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, चित्रकूट और बाराबंकी सहित 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। बाढ़ राहत आयुक्त के मुताबिक लगभग 3.5 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित होने के बावजूद राहत और बचाव तंत्र की सक्रियता से लगभग 72,000 बाढ़ राहत किट और 3.5 लाख से अधिक प्रभावितों को लंच पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 17,000 से ज्यादा लोगों को शरणालयों सहित सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है।
9: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 8,50,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पशुपालन विभाग के अनुसार करीब 70,000 पशु भी प्रभावित हुए हैं। बाढ़

0: प्रभावित इलाकों में लोगों की सुविधा के लिए 700 नावों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं बाढ़ राहत शिविर और सामुदायिक रसोई घर भी संचालित किए जा रहे हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में गंगा और सोन नदियों के जलस्तर में कुछ कमी आने की संभावना है। हालांकि पटना में पुनपुन नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण गया पटना रेलखंड पर रेल परिचालन प्रभावित हुआ है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कल पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा दही हांडी उत्सव आज महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: मुंबई और आसपास के जिलों में दही हांडी भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा एक पारंपरिक उत्सव है। इसमें गोविंदा मानव पिरामिड बनाकर मिट्टी के हांडी फोड़ते हैं। इस उत्सव के दौरान कुछ गोविंदा कभी कभी चोटिल हो जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए बीएमसी ने अस्पतालों को पूरी तरह तैयार रहने और घायल गोविंदाओं को मुफ्त उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने 1,60,000 गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की है। अस्पताल में भर्ती होने, स्थायी पूर्ण या आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में 1,00,000 से 10,00,000 रुपए तक का बीमा लाभ दिया जाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल शाम प्रतियोगिता का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत आने वाले वर्षों में खेलों का प्रमुख केंद्र बनेगा।
3: 19 देशों से 108 से ज्यादा पैरा एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं उस वक्त कि अहमदाबाद, गुजरात और भारत आने वाले दिनों में खेल जगत के, चाहे वो ओलंपिक्स से जुड़े हुए खेल हो, सभी प्रकार के खेल का एक बहुत बड़ा सेंटर बनने वाला है।
1: एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: धन्यवाद मुकेश। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यूएस उपग्रह के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने लिखा है, इसरो ने अंतरिक्ष में स्थापित किया तीसरा नेत्र। जनसत्ता की सुर्खी है, देश के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण, इसरो की एक और कामयाबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो और उद्योग जगत की साझेदारी को अंतरिक्ष क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। कहा, हमारे देश के लिए गर्व का पल। दैनिक जागरण के अनुसार, प्रधानमंत्री जिस प्रोजेक्ट का करेंगे लोकार्पण, उसकी 6 महीने तक होगी निगरानी। कुछ घटनाओं से सीख लेकर NHAI ने कार्यक्रमों की SOP में जोड़े नए दिशा निर्देश। दैनिक भास्कर ने शिक्षक दिवस पर विशेष सुर्खी से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विशेष लेख साझा करते हुए लिखा है, विजेता होते हैं शिक्षक, लेकिन शिष्य से पराजित होने की शिक्षा उन्हें महान बनाती है। पंजाब केसरी ने शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के लेख पर विकसित भारत के सफर में शिक्षकों की भूमिका देते हुए लिखा है, यह दिन सिर्फ सराहना करने के दिन से कहीं ज्यादा मायने रखता है। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मथुरा में रात 12 बजते ही हर तरफ उल्लास और हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की का उत्साह देखने को मिला। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, ब्रज में बाजे बधाई नंद घर आए कन्हाई। नवभारत टाइम्स ने चमत्कार शीर्षक से दिया है, नेपाल में सुरंग से 9 दिन बाद 2 को जिंदा बचाया, जन्माष्टमी पर सुरक्षित निकाले गए। फोरमैन संजय साह ने कहा, हरे कृष्ण महामंत्र जपता रहा। अमर उजाला की सुर्खी है, सुरंग में गूंजा जिंदगी का मंत्र। राजस्थान पत्रिका ने बदलेगी गैजेट की दुनिया देते हुए लिखा है, बेकार जाने वाली गर्मी से भी बनेगी काम की बिजली।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया। 48 शिक्षकों को आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। सरकार ने ISO टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल की अनुमति तथा कड़े नियमों का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री S. जयशंकर ने कहा, भारत संघर्ष समाप्त करने में यूक्रेन और रूस के साथ निरंतर संपर्क में है। संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका का सटीक आकार दर्शाने वाले नए विश्व मानचित्र को अपनाने के पक्ष में मतदान किया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार

0: प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी।

0: का है राम राव सांगा सांगा
1: तो क्या महीना कबूतर
0: नहीं रे बाला नो छोकरा तुम जानता है बोलो कोमड़ी का पिल्लू।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन महान शिक्षाविद और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुलाकात की झलकियां साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। इसके लिए शिक्षकों को अपने भीतर के बच्चे को भी जीवित रखना होगा।
1: हो सकता है एक आध बच्चा शिक्षा में ठीक नहीं होगा, लेकिन परमात्मा ने हरेक को कोई न कोई ताकत दी होती है, उसकी टैलेंट पहचानने के लिए कोई कोशिश करते हैं आप टीचर लोग।
0: श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय पर चिंता जताई।
1: एक विषय है स्क्रीन टाइम, अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा। खेलकूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, अरे एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सके। और ऐसे में क्रिएटिविटी के तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए।
0: प्रधानमंत्री ने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि इसके प्रति लगातार जागरूकता फैलाने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे अनजाने में ही इसकी चपेट में आ जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षक दिवस समाज में शिक्षकों के महत्वपूर्ण योगदान को सम्मान देने का अवसर है। ये भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों से अपना ज्ञान लगातार बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और पढ़ाने के नए तरीकों का उपयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देते हुए महान शिक्षक बताया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर आज 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
2: हर वर्ष 5 सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति, प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह अवसर राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों और शिक्षाविदों की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करता है। शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन को बदलते हैं, पीढ़ियों को दिशा देते हैं और समाज की नींव को मजबूत करते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संगठनों से हैं। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल शुरू हो गया। सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां और सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। आज मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक मार्गों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस और यूक्रेन के लगातार संपर्क में है। वार्सो में पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत संघर्ष समाप्त करने के लिए हर संभव मदद करने को तैयार है। इससे पहले उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की समेत शीर्ष नेताओं से बातचीत की। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: प्रसार भारतीच्या वेव्ज OTT प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR ॲपसहित 558 किलो हट्सवर आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी. सकाळचे 11:05 झाली आहेत. प्रसारित करत आहो गीत बहार, मराठी चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम श्रोते हो. आज शनिवार दिनांक 5 सप्टेंबर. श्रोते हो, मराठी चित्रपटांमधलं एक यशस्वी नाव म्हणजेच प्रतिभावान संवेदनशील अभिनेत्री दिग्दर्शक म्हणून ज्यांचं नाव अग्रक्रमानं घेतलं जातं त्या स्मिता तळवलकर. स्मिता तळवलकर यांनी आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात वृत्तनिवेदिका म्हणून केली. सुमारे 17 वर्ष त्यांनी वृत्तनिवेदिकेचं काम केल्यानंतर पुढची 3 दशकं रुपेरी पडदा, दूरचित्रवाणी मालिका आणि रंगभूमीवर त्यांनी आपल्या दर्जेदार अभिनयाचा ठसा उमटवला.

0: This is Akashvani. We now bring you a live description of the presentation ceremony of the National Award to Teachers, being organized by Ministry of Education, Government of India, in the gracious presence of Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, at Vigyan Bhavan, New Delhi. Our commentators are Shoaib Yar Khan in Hindi and कौशिक रॉय इन इंग्लिश।
1: ये आकाशवाणी है। अब हम आपको सुनवाते हैं नई दिल्ली के विज्ञान भवन से शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह का सजीव विवरण। विवरण दे रहे हैं शोएश यार खान हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। आइए विज्ञान भवन चलें।
2: सभी श्रोताओं को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं शोएश यार खान और अंग्रेजी में आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मेरे साथ हैं कौशिक राय। आकाशवाणी के इस सीधे प्रसारण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देश की राजधानी नई दिल्ली के विज्ञान भवन के भव्य प्लेनरी हॉल से आपके साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अवसर है शिक्षक दिवस का और समारोह है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 का। ये वो अवसर है जब राष्ट्र उन शिक्षकों को सम्मानित करता है जिन्होंने अपने ज्ञान, समर्पण, नवाचार और सेवा भाव से विद्यार्थियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। आज भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश के 48 उत्कृष्ट स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस गरिमापूर्ण समारोह का आयोजन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय एवं कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस समय विज्ञान भवन का प्लेनरी हॉल देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए शिक्षकों की उपस्थिति से विशेष रूप से गौरवपूर्ण दिखाई दे रहा है। इन शिक्षकों के चेहरों पर उत्साह है, गर्व है, वर्षों की मेहनत के बाद मिले इस राष्ट्रीय सम्मान की खुशी है। आज यहां उपस्थित प्रत्येक शिक्षक अपने साथ अपने विद्यालय की एक कहानी लेकर आया है। किसी के साथ ग्रामीण भारत की कहानी है, किसी के साथ दूर दराज के क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने की कहानी है, किसी ने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित की है तो किसी ने तकनीक और नवाचार के माध्यम से शिक्षा को नई दिशा दी है। आज इन सब प्रयासों को राष्ट्र की ओर से सम्मान मिलने जा रहा है। कौशिक।
3: गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। दिस एंशियंट मंत्र कैप्चर्ड द रिवरेंस दैट इंडिया हैज फॉर इट्स टीचर्स ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल टीचर्स डे। From the family of Akashvani and Prasar Bharati, we convey our best wishes to all the teachers of the country who are the builders of Viksit Bharat 2047. And as my colleague Shoaib Yar Khan mentioned that today we have 48 teachers who excel in their fields and who are building the next generation of India, the leaders of India's tomorrow, who will be guiding us towards Viksit Bharat at 2047. These teachers, as Shoaib mentioned, come from far and distant places of India, but every one of them carry a success story. And it is indeed a great moment for all these teachers who will be receiving the National Teachers Award from the Honorable Rashtrapati ji in just a short while from now. What a pride moment it is indeed for them. And yesterday, the Honorable Prime Minister also interacted with the teachers and he also took feedback from them about how today's children, especially in schools, are performing. And he also told them to pay attention to those students who spend more time on the screen. So screen time has to be reduced and this has to be channelized towards sports or other skilling activities. And as we know that Teachers Day is celebrated on the 5th of September, which happens to be the birth anniversary of India's second president, the philosopher president of India, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, who was the president of India from 1962 to 1967. Dr. Radhakrishnan was an academic of repute, a philosopher, and he was also a statesman. Dr. Radhakrishnan was born on the 5th of September 1888 at Tiruthani of North Arcot district in erstwhile Madras Presidency. His family hailed from Sarvepalli village in Nellore district of Andhra Pradesh, and he spent his early years in Tiruthani and Tirupati. Dr. Radhakrishnan was awarded scholarships throughout his academic life and joined the Voorhees College in Vellore for his high school education. And he graduated from the Madras University at the age of 16. Dr. Radhakrishnan studied philosophy and he wished to study mathematics also. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan wrote his bachelor's degree thesis on the ethics of the Vedanta and its metaphysical presuppositions. Dr. Radhakrishnan became president of India. Some of his erstwhile students and friends requested him to allow them to celebrate his birthday. But he replied, instead of celebrating my birthday, it would be my proud privilege if 5th of September is observed as Teachers' Day. Thus, his birthday has since been celebrated

0: as Teachers Day in India. And the Honorable Rashtrapati Ji, Srimati Draupadi Murmu, will arrive at the Plenary Hall of Vigyan Bhavan in just a short while from now.
1: Mananiya Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu, thodi hi der mein Vigyan Bhavan mein 48 skooli shikshakon ko Rashtriya Shikshak Puraskar pradan karegi. Is karyakram mein pratyek puraskar vijeta ke dwara kiye gaye anukaraniya karyon ko darshane wale laghu prachitron ko bhi pradarshit kiya jayega. श्रोताओं, 5 सितंबर भारत के लिए केवल एक तारीख नहीं, ये दिन है देश के महान दार्शनिक, शिक्षाविद और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती का. इसी कारण भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है. डॉक्टर राधाकृष्णन का जीवन इस बात का उदाहरण था कि शिक्षा केवल रोजगार प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, शिक्षा व्यक्ति के विचारों को विकसित करती है, उसके चरित्र का निर्माण करती है और उसे समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनाती है. इसीलिए शिक्षक का स्थान केवल कक्षा तक सीमित नहीं है, शिक्षक भविष्य का निर्माण करता है. श्रोताओं, एक सुंदर विचार है, शिक्षक वो नहीं जो केवल पाठ पढ़ाए, शिक्षक वो है जो जीवन पढ़ना सिखाए. और वास्तव में एक शिक्षक विद्यार्थी को केवल ये नहीं बताता कि क्या पढ़ना है, वो उसे यह भी सिखाता है क्या सोचना है, कैसा सोचना है और सही तथा गलत में अंतर कैसे करना है. यही शिक्षा की वास्तविक शक्ति है. श्रोताओं, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देश के उत्कृष्ट स्कूली शिक्षकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है. भारत सरकार के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से इन पुरस्कारों का उद्देश्य उन उत्कृष्ट शिक्षकों के योगदान को सम्मानित करना है जिन्होंने अपने समर्पण से विद्यार्थियों के जीवन को समृद्ध किया है और स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है. इस वर्ष 48 शिक्षकों का चयन किया गया है. इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक हैं. ये शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं. इनका चयन राज्य, जिला, राष्ट्रीय स्तर की 3 स्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है. श्रोताओं, विज्ञान भवन का यह ऐतिहासिक सभागार उत्सुकता से माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की प्रतीक्षा कर रहा है और अब मैं देख रहा हूँ कि शिक्षा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी इस वक्त सभागार में पधार चुके हैं. उनके साथ शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी भी हैं. माननीय राष्ट्रपति के आगमन की सुगबुगाहट यहाँ पर अब बढ़ गई है, लोगों में उत्साह बढ़ गया है, कौतूहल बढ़ गया है और इस वक्त सबकी निगाहें हैं उस द्वार की तरफ जहाँ से माननीय राष्ट्रपति कुछ ही क्षणों में प्रवेश करेंगी और ये 2026 के राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार प्रदान करेंगी.
0: And on the dais, we can see that the Minister for Education, Shri Prahlad Joshi, the Minister for Skill Development and Entrepreneurship, Independent Charge, and Minister of State for Education, Shri Jayant Chaudhary, Dr. Shukanta Majumdar, Honorable Minister of State for Education, and the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, has arrived at the plenary hall of the Vigyan Bhavan. And she is being loudly cheered by all the awardees and the delegates who are present at the plenary hall.
1: यह अत्यंत गर्मी में दृश्य है. भारत के राष्ट्रपति इस वक्त और

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के साथ ही इस समारोह का विधिवत शुभारंभ हो चुका है। माननीय राष्ट्रपति अपना स्थान ग्रहण करते हुए।
1: महोदय, आपकी अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ किया जाए।
0: और अब माननीय राष्ट्रपति से विधिवत अनुमति लेकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है।
2: गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
0: देश के अलग अलग हिस्सों से आए शिक्षक राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित हैं और पूरे सभागार में सम्मान और उत्साह का वातावरण दिखाई दे रहा है। सभागार में उपस्थित गणमान्य अतिथि और शिक्षकगण राष्ट्रपति का अभिवादन कर रहे हैं। सबकी निगाहें इस वक्त मंच की तरफ हैं और मंच पर आसीन है माननीय राष्ट्रपति के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी, शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी, शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकंता मजूमदार, देवश्री मुखर्जी जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में, इसके अलावा मिस दीप्ति गौड़ मुखर्जी जो कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी है, और श्री टी के अनिल कुमार सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन।
3: एंड नाउ अ शॉर्ट फिल्म ऑन द फर्स्ट लॉट ऑफ 24 नेशनल टीचर अवार्डीज।
4: विज्ञान शिक्षा को नई दिशा दी, उन्होंने वर्चुअल बायोलॉजी लेबोरेटरी, एआई इनेबल्ड बायोलॉजी एजुकेशन और क्यूआर आधारित ट्री टॉक जैसे नवाचारों से उन्नत स्टेम अधिगम को सुलभ बनाया, जिसके लिए डॉक्टर दिव्येंदु सेन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
5: सुश्री अमुथा जेनी 22 वर्षों की सेवा में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN समावेशी एवं आनंदमय शिक्षा तथा युवा नेतृत्व के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। कम लागत वाली शिक्षण सामग्री एवं KVS फोनिक्स वर्कबुक विकसित किए। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री अमुथा जे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
4: पंजाब के पटियाला स्थित राजकीय विक्टोरिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में श्री दिनेश कुमार ने करीब 25 वर्षों से विज्ञान शिक्षा को समृद्ध बनाने में योगदान दिया है। उन्हें पंजाब स्टेट अवार्ड 2020 और टीचर ऑफ द ईयर ऑफ पंजाब अवार्ड 2022 से भी सम्मानित किया गया। विज्ञान शिक्षा में अपने समर्पित योगदान के लिए श्री दिनेश कुमार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
5: सिक्किम की खूबसूरत पहाड़ियों में PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डिकलिंग में सुश्री सुषमा तमांग ने दूर दराज के विद्यार्थियों की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें इंस्पायर मानक इंटरनेशनल YRE कंपटीशन और एशियाई सम्मेलनों में सफलता के लिए तैयार किया, जिसके लिए सुश्री सुषमा तमांग को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। झारखंड के बरमसिया स्थित मिडिल स्कूल बरमसिया में सुश्री मुनमुन भट्टाचार्य जी ने कोयला खनन क्षेत्र के वंचित बच्चों के लिए कम लागत वाली फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी सामग्री, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग और व्यवसायिक कौशल के अवसरों से बच्चों की सीखने की चुनौतियों को कम किया, जिसके लिए सुश्री मुनमुन भट्टाचार्य जी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम जिले के नया ग्राम स्थित गवर्नमेंट मॉडल स्कूल में श्री शांतनु पात्र ने वंचित आदिवासी विद्यार्थियों के लिए समावेशी, तकनीक सक्षम एवं अनुभवात्मक शिक्षा को नई दिशा दी। उन्होंने ARVR ब्लेंडेड लर्निंग, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग का प्रभावी उपयोग किया। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री शांतनु पात्रा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
4: चंडीगढ़ के मलोया कॉलोनी स्थित राजकीय मॉडल हाई स्कूल में श्री रवि जायसवाल ने विज्ञान शिक्षण को नवाचार, तकनीक और अनुभवात्मक अधिगम से समृद्ध किया। उन्होंने कम लागत में CV रमन डोम थिएटर, मोबाइल साइंस लैब तथा पुनर्चक्रित सामग्री से साइंस एंड नॉलेज पार्क विकसित किया। उनके तकनीक सक्षम एवं नवाचारी योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने और बच्चों के लिए सीखने के नए अवसर तैयार करने में सुश्री लालनुन मावी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मिजोरम के लंगले स्थित गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक वेंग हाई स्कूल में उन्होंने इंटरैक्टिव आईसीटी टूल्स और फ्री रेमिडियल कोचिंग के जरिए विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को मजबूत किया, सार्वजनिक शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के अवसर देने के लिए सुश्री लालनुन मावी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। सुश्री सुनीता यादव ने छत्तीसगढ़ के खिचड़ी स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रोजेक्टर, लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल आईसीटी उपकरणों से स्मार्ट क्लासरूम तैयार किया। न्योता भोजन और घर घर पुस्तक वाचन जैसे प्रयासों से सुघर पढ़ैया प्लेटफॉर्म ग्रेड प्राप्त किया। ग्रामीण शिक्षा को नवाचार से सशक्त बनाने के लिए सुश्री सुनीता यादव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
5: हिमाचल प्रदेश के भालेट स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य सुश्री मंजरी वी महाजन ने शिक्षण को बढ़ावा देते हुए कचरा प्रबंधन, कंपोस्टिंग, जल संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में प्रभावी पहल की। शिक्षा में नवाचार और नेतृत्व के उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री मंजरी वी महाजन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के माया बंदर स्थित पीएम श्री जीएमएसएसएस में श्री जे प्रकाश राव ने बिल्डिंग एज लर्निंग एड अप्रोच के जरिए स्कूल को ही इंटरैक्टिव रिसोर्सेज में बदला। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, डिजिटल रिसोर्सेज, 21st सेंचुरी स्किल्स को मजबूत किया, जिसके लिए श्री जे प्रकाश राव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
4: सुश्री कुंदा जयवंत बच्छाव ने नगर निगम विद्यालय को एआरवीआर

0: स्थित उर्दू प्राइमरी स्कूल में सुश्री खुशबू कुमारी ने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कम लागत वाली शिक्षण सामग्री और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को सरल, सहज और प्रभावी बनाया। सुश्री खुशबू कुमारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित PHEL के शासकीय महात्मा गांधी संदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में डॉक्टर अर्चना शुक्ला ने 15 वर्षों में विज्ञान को प्रयोग, पर्यावरण और खोज से जोड़ा। उन्होंने 1000 से अधिक गौरैया घर, 102 प्रजातियों के पेड़ों का डिजिटल मानचित्रण और प्लांट इमोशन जैसे नवाचार किए, जिसके लिए डॉक्टर अर्चना शुक्ला को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज विजयनगर में डॉक्टर रेणु त्रिपाठी ने 60 गांव के ड्रॉपआउट और स्कूल से बाहर बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ते हुए उन्होंने स्टेम, अटल टिंकरिंग लैब और कम लागत वाली शिक्षण सामग्री के माध्यम से समस्या समाधान को बढ़ावा दिया, जिसके लिए डॉक्टर रेणु त्रिपाठी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। सुश्री भवानी बोमपेली ने नवाचारी शिक्षण के माध्यम से प्री प्राइमरी शिक्षा का विस्तार कर खेल आधारित एवं डिजिटल अधिगम वातावरण विकसित किया तथा कंक्रीट पिक्टोरियल एब्स्ट्रैक्ट पद्धति और कम लागत वाली शिक्षण सामग्री से गणित एवं भाषा सीखने को सरल बनाया। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री भवानी बोमपेली को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: सुश्री सुमन गोयल ने दिल्ली के पोर्ट कला स्थित राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टूल्स और स्वयं निर्मित कम लागत वाली टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के माध्यम से सीखने को रोचक और अनुभवात्मक बनाया। बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा, विद्यालय में स्थिरता और शैक्षणिक प्रगति बढ़ी, जिसके लिए सुश्री सुमन गोयल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। ओडिशा के अली पिंगल स्थित राजकीय उच्च विद्यालय में श्री पदराज उमाकांत नायक के मार्गदर्शन में 50 से अधिक प्रोटोटाइप विकसित हुए, जिनमें कम लागत वाली ऑटोमेटिक प्लेट वॉशिंग मशीन भी शामिल है, जिसके लिए एक विद्यार्थी को भारत सरकार का पेटेंट मिला। वैज्ञानिक सोच, नवाचार और सामुदायिक भागीदारी से ग्रामीण शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए श्री पदराज उमाकांत नायक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: श्री एस गणेशन भौतिकी शिक्षक ने साइंस थिएटर, अनुभवात्मक स्टेम एवं AI सक्षम शिक्षण के माध्यम से विज्ञान शिक्षा में उल्लेखनीय नवाचार किया। उनके साइंस थिएटर इंटीग्रेशन मॉडल ने नाटक, कहानी एवं प्रदर्शन के माध्यम से जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को सरल और रोचक बनाया, जिसके लिए श्री एस गणेशन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। गोवा के एक्सएम स्थित गुजराती समाज स्पेशल स्कूल में श्री महादेव हनुमंत शिंदे ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षण को नई दिशा दी। उन्होंने 14 गतिविधि आधारित स्रोत पुस्तिकाएं तथा टैबलेट आधारित डिजिटल संसाधन विकसित किए। उनके प्रशिक्षित खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अम्भारत का गौरव बढ़ाया है। श्री महादेव हनुमंत शिंदे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: मणिपुर के कोंगबा माखा स्थित लाइको अपर प्राइमरी स्कूल में श्री वांगलिम्बम गोविंद सिंह ने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कहानी और फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के माध्यम से बच्चों की सीखने की क्षमता और भागीदारी को मजबूत किया, जिसके लिए श्री वांगलिम्बम गोविंद सिंह को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: महाराष्ट्र के सतारा स्थित सैनिक स्कूल में श्री शिव प्रसाद अरविंद सिंगारे ने हैंड्स ऑन साइंस एजुकेशन, लो कॉस्ट लर्निंग टूल और इंटरैक्टिव डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा दिया है। उनके विद्यार्थियों ने CSIR इनोवेशन अवार्ड और DSC साकुरा साइंस जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवसर हासिल किए। श्री शिव प्रसाद अरविंद सिंगारे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के ईदगाह स्थित

0: कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सुश्री संगीता यादव ने गणितोत्सव, क्वेस्ट फॉर मैथमेटिक्स, मैथ ई माइंड एंड मैथमेटिक्स जैसी पहलों के जरिए गणित को बनाया रचनात्मक और विद्यार्थियों में समस्या समाधान की क्षमता विकसित की, जिसके लिए सुश्री संगीता यादव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। ओडिशा के मयूरभंज जिले के करंजिया स्थित ईएमआरएस में मोहम्मद जफर आलम ने आदिवासी बच्चों की शिक्षा में आधुनिक तकनीक, खेल और अनुभवात्मक शिक्षण के साथ आदिवासी संस्कृति और विरासत को भी शिक्षा का हिस्सा बनाए रखा, जिसके लिए मोहम्मद जफर आलम को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: और अब हमारी विनती है माननीय राष्ट्रपति महोदय आपसे कि चाहे पुरस्कार कार्यक्रम
2: प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विल कन्फर द नेशनल टीचर्स अवार्ड्स 2026 ऑन 24 ऑफ द टीचर्स ऑन whom telefilm was played at Vigyan Bhavan, and we can see that the Honorable Rashtrapati ji, the Union Minister for Education Shri Prahlad Joshi, and the Union Minister of State for Education Shri Jayant Chaudhary, and Dr. Sukanto Majumdar, and other dignitaries are on the dais. And now the first teacher to receive the award is Shri दिव्यंदु सेन फ्रॉम राजस्थान महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल पचपहाड़।
3: और अब वो क्षण आ गया है जिसका सभी को इंतजार था। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 का पुरस्कार वितरण शुरू हो चुका है।
1: दिनेश कुमार पंजाब,
3: चार विजेताओं के नाम पुकारे जा रहे हैं।
2: श्री दिनेश कुमार फ्रॉम पंजाब विल रिसीव द नेशनल टीचर्स अवार्ड 2026 फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
1: तमांग सिक्किम।
3: मंच पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है। एक एक करके सब शिक्षक
2: सुषमा तमांग
1: झारखंड,
2: मुनमुन भट्टाचार्य टीचर फ्रॉम झारखंड, रियली प्राउड मोमेंट फॉर दीज नेशन बिल्डर्स ऑफ इंडिया टू रिसीव द नेशनल टीचर्स अवार्ड 2026।
1: वेस्ट बंगाल।
3: और अब पश्चिम बंगाल के शांतनु जी को ये शिक्षक पुरस्कार दिया जा रहा है। 48 शिक्षकों को आज सम्मानित किया जा रहा है।
1: रवि जायसवाल चंडीगढ़।
3: और अब चंडीगढ़ के रवि जायसवाल माननीय राष्ट्रपति से सम्मान ग्रहण करते हुए।
1: लनुन मोई मिजोरम,
2: फ्रॉम मिजोरम मिस लनुन मावी, एंड व्हाट अ प्राउड मोमेंट इट इज इंडीड फॉर दीज टीचर्स टू रिसीव द नेशनल टीचर्स अवार्ड।
1: सुनीता यादव छत्तीसगढ़।
2: राष्ट्रपति जी and Sunita Yadav ji from Chhattisgarh will be receiving the National Teachers Award 2026 from the Honorable Rashtrapati ji.
1: Manjuri Devi Mahajan, Himachal Pradesh.
3: Aur ab Himachal Pradesh ki Manjuri ji Mahajan Maharashtra Rashtrapati ke samaksh apna puraskar lene ke liye bade utsah aur garv ke sath aage badhti hui. Maharashtra Rashtrapati
1: Jay Prakash Rao, Andaman and Nicobar Islands.
3: Aur ab Andaman Nicobar आइलैंड से आए शिक्षक जो कि दिव्यांग है, वो माननीय राष्ट्रपति की आए हल्के हल्के एक छड़ी के सहारे मरते हुए माननीय राष्ट्रपति उन्हें ये पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं।
2: रिसीविंग द अवार्ड, व्हाट अ प्राउड मोमेंट इट इज इंडीड फॉर जय प्रकाश राव द टीचर फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, एंड दिस इज इंडीड अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल द टीचर्स who are here at the
1: Kunda Jaivan Bachao, Maharashtra.
2: And Ms. Kunda Jaivan Bachao of Maharashtra is now receiving the National Teachers Award 2026 from the Honorable President of India.
1: Khushbu Kumari, Bihar.
3: Aur ab Bihar ki Khushbu Kumari Maraniya Rashtrapati se apna ye samman grahan karte hue
1: अर्चना शुक्ला मध्य
3: समारोह के
2: फ्रॉम मध्य प्रदेश मिस अर्चना शुक्ला एंड शी रिसीव दिस अवार्ड फ्रॉम द ऑनरेबल राष्ट्रपति जी फॉर अ वर्क स्पेशली ऑन इनोवेशन।
1: रेणु त्रिपाठी उत्तर प्रदेश,
2: मिस रेणु त्रिपाठी फ्रॉम उत्तर प्रदेश इज गाजियाबाद एंड शी इज working for especially school dropouts, STEM and automation among
1: Bhavani
2: her students.
1: Bombelli, Telangana.
2: From Telangana, Ms. Bhavani Bompelli, and she focuses on innovation for pre-primary students. What a proud moment it is indeed.
1: Suman Goel, Delhi.
2: To receive the award from the Honorable Rashtrapati ji, and now Ms. Suman Goel from Delhi, and she specializes on ICT and digital tools in education.
1: Umakant Nayak, Orissa.
3: Rashtrapati ke haathon samman prapt karte hue shikshakon ke chehre pe ek prasannta spasht dikhai de rahi hai. ये केवल एक पदक या प्रमाण नहीं ये उनके पूरे जीवन की मेहनत राष्ट्रीय स्तर पर पहचान
2: फ्रॉम पुदुचेरी मिस्टर गणेशन एस इज रिसीविंग द नेशनल टीचर्स अवार्ड 2026 फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
1: महादेव हनुमंत शिंदे गोवा
3: गोवा से महादेव हनुमंत शिंदे माननीय राष्ट्रपति से अपना सम्मान ग्रहण करते हुए
1: वांगलेमबाम गोविंद सिंह मणिपुर
2: And from the land of jewels, Manipur is Wanglambam Gobind Singh.
1: Shiv Prasad Arvind Singare, Sainik School.
2: From Sainik School, Shiv Prasad Arvind Singare receives the National Teachers Award from the Honorable
1: Sangeeta Yadav, Central Board of Secondary Education.
3: CBSE ki Sangeeta Yadav, Marathi Rashtrapati ke aage.
1: मोहम्मद जफर आलम एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल
3: और अब श्री जफर आलम अपना पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार माननीय
1: कोटि कोटि धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय
2: एंड नाउ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इज बीन एस्कॉर्टेड टू द डेस अलोंग विद द Minister for Education, Shri Prahlad Joshi, and the Ministers of State for Education, Shri Jayant Chaudhary and Dr. Shukanta Majumdar, and the Secretary, Department of School Education and Literacy, the Secretary, Department of Higher Education, and the Secretary, Department of Skill Development and Entrepreneurship.
3: 24 शिक्षकों को माननीय राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया गया और अब माननीय राष्ट्रपति गणमान्य व्यक्तियों के साथ अपना स्थान ग्रहण करते हुए
4: महाराष्ट्र के कैच थारो रोड स्थित निवासी माध्यमिक विद्यालय नरसिंह राव गित्ते को 29 वर्षों से गन्ना श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का काम किया है बाल रक्षक और शिक्षण अपल्यादारी जैसे अभियानों से उन्होंने बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई उन्होंने बच्चों को उच्च शिक्षा और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ाया जिसके लिए डॉक्टर कविता नरसिंह राव गित्ते को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है गुजरात के रंगपुर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में श्री नितिन कुमार महेंद्र कुमार पाठक ने सीमित संसाधनों वाले आदिवासी विद्यालय को डिजिटल एवं अनुभवात्मक शिक्षा के केंद्र में बदल दिया उन्होंने 7D VR AR लैब और आर न्यूज जैसी सुविधाएं विकसित की उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस एवं इसरो प्रशिक्षण में सफलता प्राप्त की उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है
5: लद्दाख के कारगिल स्थित शासकीय मॉडल मिडिल स्कूल में मोहम्मद मुस्तफा कमाल ने सीमित संसाधनों के बीच बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान को अनुभव और स्थानीय जीवन से जोड़कर रोचक बनाया 1000 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित कर संदर्भ आधारित शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए मोहम्मद मुस्तफा कमाल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है केरलम के श्री सुनील कुमार केपी ने नवाचारी एवं आईसीटी सक्षम भाषा शिक्षण के माध्यम से मलयालम भाषा में पठन संचार एवं रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा दिया विद्यार्थी मार्गदर्शन एवं समग्र विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री सुनील कुमार केपी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है
4: सुश्री याको तामे ने अरुणाचल प्रदेश के नाहरलागुन स्थित गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जी सेक्टर में विशेषकर बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ा और एक जर्जर विद्यालय को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी साइंस और मैथमेटिक्स लेबोरेटरीज से सुसज्जित संस्थान में बदला उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने स्टेट बोर्ड में शीर्ष स्थान हासिल किए जिसके लिए सुश्री याकू तामे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
5: आंध्र प्रदेश के श्री राजेश कोलुरी ने एआई सक्षम एफएलएन डिजिटल शिक्षा एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में उल्लेखनीय योगदान दिया। राज क्लासरूम के माध्यम से डिजिटल शिक्षण को व्यापक बनाया तथा शिक्षकों की डिजिटल क्षमता वृद्धि में योगदान दिया। श्री राजेश कोलुरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
4: श्री गबर सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड के मेहरा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मुस्या खांद में 35 वर्षों तक ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा दूरदर्शन उत्तराखंड के शैक्षिक मॉड्यूल से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दूर दराज के विद्यार्थियों तक पहुँचाई। उनके नवाचार ICT आधारित शिक्षण एवं समर्पित योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
5: असम के रंगिया स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय NFR में डॉक्टर मनीषा खेत्रपाल ने समावेशी शिक्षा, बुनियादी साक्षरता और विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए निरंतर काम किया है। मास्टर ट्रेनर के रूप में उन्होंने असम के हजारों शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया, जिसके लिए डॉक्टर मनीषा खेत्रपाल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
4: पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले के वार्ड नंबर 30 स्थित श्री रामकृष्ण शारदा विद्यापीठ प्राइमरी स्कूल में श्री पलाश चौधरी ने सुबह की भूख के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसके लिए सो का लोर पुष्टि पहल शुरू की, जिससे बच्चों की उपस्थिति और विद्यालय में नामांकन 3 गुना हुआ। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक सशक्तिकरण से जोड़ा, जिसके लिए श्री पलाश चौधरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। बिहार के कुचाईकोटे स्थित मिडिल स्कूल कुचाईकोटे कन्या में सुश्री पुष्पा प्रसाद ने कम लागत वाली सामग्री, डिजिटल टूल्स और ग्रुप वर्क के जरिए विद्यार्थियों को सीखने के नए अवसर दिए। उन्होंने ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ा और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की भागीदारी बढ़ाई। उन्होंने प्लांटेशन, वाटर सेग्रीगेशन और प्लास्टिक फ्री स्कूल जैसे प्रयासों को भी बढ़ावा दिया। सुश्री पुष्पा प्रसाद को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। 18 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित सुश्री पूर्णिमा मोहनलाल पटेल ने दादरा एवं नगर हवेली के दलवाड़ा स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में विज्ञान परियोजनाओं तथा शिक्षक प्रशिक्षण में योगदान देकर उन्होंने समावेशी शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता और विद्यार्थियों के समग्र विकास को सशक्त किया। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री पूर्णिमा मोहनलाल पटेल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के जगदीशपुर स्थित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में श्री इफ्तिखार खान ने निशुल्क रविवार कला कक्षाओं के माध्यम से रचनात्मक एवं अनुभवात्मक अभिगम को बढ़ावा दिया। उन्होंने कला के माध्यम से सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक जागरूकता को भी बढ़ावा दिया। कला शिक्षा, प्रतिभा संवर्धन एवं सामाजिक जागरूकता में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री इफ्तिखार खान को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। कर्नाटक के होनेबेल स्थित गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल समतगरु में सुश्री रत्ना कुमारी एस ने टॉय बेस्ड पेडागॉजी, अबैकस मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स के जरिए सीखने को आनंददायक और समावेशी बनाया। उनके मार्गदर्शन में ग्रामीण विद्यार्थियों ने प्रतिभा करंजी जैसे स्टेट कल्चरल प्लेटफॉर्म्स और इंस्पायर जैसे नेशनल साइंस प्लेटफॉर्म्स पर सफलता हासिल की, जिसके लिए सुश्री रत्ना कुमारी एस को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
5: जम्मू कश्मीर में डलहौरी के HSS डलहौरी में मोहम्मद अयाज रैना ने कंप्यूटर लैब से लेकर स्मार्ट बोर्ड और इंटरैक्टिव ई कंटेंट को शिक्षण का हिस्सा बनाया। शिक्षक विहीन विद्यालयों के विद्यार्थियों को ऑनलाइन बॉटनी शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित की। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद अयाज रैना को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
4: रोहतक हरियाणा के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांघी में श्री अनिल कौशिक ने गणित को रोचक और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 40 से अधिक शिक्षण मॉडलों से सुसज्जित मैथ्स लैब, इंटरैक्टिव हरबंस पजल और वर्चुअल मैथ्स लैब विकसित की, जिसके लिए श्री अनिल कौशिक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। त्रिपुरा के साबरूम स्थित पीएम श्री साबरूम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में श्री रंजन देवनाथ ने स्मार्ट क्लासरूम्स

0: एक्सपीरियंशियल प्रोजेक्ट्स और इको क्लब एक्टिविटीज के जरिए लर्निंग बाय डूइंग को बढ़ावा दिया। उनके मार्गदर्शन में ग्रामीण आदिवासी छात्राओं ने स्टेट बोर्ड में शीर्ष स्थान और चीफ मिनिस्टर्स एक्सलेंस अवार्ड हासिल किए, जिसके लिए श्री रंजन देवनाथ को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: उत्तर प्रदेश के कोयलहा स्थित कंपोजिट स्कूल रसूलाबाद में सुश्री शालिनी कुशवाहा ने कला आधारित गतिविधियों, डिजिटल संसाधनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल्स के जरिए पढ़ाई को सहज और आनंदमय बनाया, जिससे विद्यालय को निपुण विद्यालय की पहचान मिली, जिसके लिए सुश्री शालिनी कुशवाहा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। तमिलनाडु के पुलियमपट्टी स्थित पंचायत यूनियन प्राइमरी स्कूल में श्री थंगाराज एम ने बच्चों के लिए शिक्षा को समावेशी, आनंददायक और उनके जीवन से जुड़ा बनाया है। उन्होंने ग्रामीण स्कूलों में टॉयलेट, स्मार्ट क्लासरूम, इंटरैक्टिव बोर्ड, टॉय लाइब्रेरीज और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में योगदान दिया, जिसके लिए श्री थंगाराज एम को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। राजस्थान के जयपुर चाकसू स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय तुमली का बास में डॉक्टर वर्तिका गुलाटी ने मूंगफली से बीज गणित और पतंगों से ज्यामिति समझाने के साथ प्रश्नों से विज्ञान पहल के जरिए रटने की जगह विद्यार्थियों में जिज्ञासा और खोज की भावना विकसित की। डॉक्टर वर्तिका गुलाटी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: श्री आर रोनल्ड मेरो ने नागालैंड के सिच्चू स्थित जीएचएसएस सिच्चू सुक्सा में समुदाय संपर्क व्यक्तिगत मार्गदर्शन के जरिए बच्चों को विद्यालय से जोड़े रखा और ड्रॉप आउट कम, आईसीटी आधारित शिक्षण के साथ शैक्षिक भ्रमण, वाद विवाद और सांस्कृतिक गतिविधियों से उन्होंने सीखने को जीवन से जोड़ा। शिक्षा के प्रति उनके समर्पण के लिए श्री आर रोनल्ड मेरो को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के कंजवार स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय में श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह ने जन भागीदारी एवं समावेशी शिक्षा के माध्यम से विद्यालय को सामुदायिक विकास का केंद्र बनाया। उनके प्रयासों से नामांकन 69 से बढ़कर 202, उपस्थिति 44% से बढ़कर 96% हुई और ड्रॉपआउट समाप्त हुए। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: श्री वैभव वसंतराव कुलकर्णी ने महाराष्ट्र के लातूर स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में खिलौनों, कला और वास्तविक जीवन की समस्याओं के माध्यम से जटिल गणितीय अवधारणाओं को सरल और रोचक बनाया। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण गणितीय सामग्री देश भर के विद्यार्थियों तक पहुंचाई, जिसके लिए श्री वैभव वसंतराव कुलकर्णी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: असम के जनजातीय क्षेत्र में श्री राजेश बर्दोलोई ने प्रथम पीढ़ी के मिशिंग जनजातीय विद्यार्थियों के लिए गतिविधि आधारित आईसीटी सक्षम एवं बहुभाषी शिक्षण को प्रभावी बनाया। उन्होंने सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों एवं दीक्षाई कंटेंट के विकास में योगदान दिया। जनजातीय शिक्षा, बहुभाषी शिक्षण, डिजिटल सशक्तिकरण एवं सामाजिक नेतृत्व में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। सुश्री राधा राजेश ने माध्यमिक विज्ञान शिक्षा में नवाचारों एवं एआई सक्षम शिक्षण को प्रभावी बनाया। उन्होंने फील्ड आधारित अधिगम, प्रयोगात्मक गतिविधियों और जैव नैतिक चर्चाओं के माध्यम से जीव विज्ञान को अनुभवात्मक एवं जीवन केंद्रित बनाया। उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया तथा इसरो यूआरएससी नेशनल साइंस डे में 4 बार विजेता रहे। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
2: और अब हम माननीय राष्ट्रपति महोदया आपसे विनम्र विनती करते हैं कि
3: प्लेनरी हॉल में पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों के उत्कृष्ट कार्यों पर आधारित लघु वृत्त चित्र दिखाया गया। इन फिल्मों के माध्यम से हम जान पाए कि देश के विभिन्न हिस्सों में शिक्षक किस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में नए प्रयोग कर रहे हैं, कहीं तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं स्थानीय संसाधनों के माध्यम से इस प्रक्रिया को विकसित कर रहे हैं सीखने की, कहीं खेल
4: गतिविधियों को। राष्ट्रपति महाराष्ट्र।

0: Minnis Secretary, Department of School Education and Literacy, Sri T.K. Anil Kumar, the Secretary, Department of Higher Education, Srimati Deepthi Gaur Mukherjee, and the Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Dr. Devashish Mukherjee, have now taken their seats on the dais. And the Honorable President will also confer awards to teachers and to the institutes who have worked in higher education. And now,
1: architecture shiksha ko sustainable design aur real world learning se joda hai. Grameen kshetron se judkar, ve vidyarthiyon ko awas, school, avsanrachna ki vastavik chunautiyon ko samajhne ke liye prerit karti hai. Vastu kala shikshan ke liye Professor Avlokita Agrawal ko Rashtriya Shikshak Puraskar 2026 se sammanit kiya jata hai. तेलंगाना के हैदराबाद स्थित आईआईटी हैदराबाद में प्रोफेसर कीर्ति चंद्र साहू ने शोध, शिक्षण और अकादमिक नेतृत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. विज्ञान और शोध को भविष्य की मौसम संबंधी चुनौतियों से जोड़ने और विद्यार्थियों को शोध के लिए प्रेरित करने के लिए प्रोफेसर कीर्ति चंद्र साहू को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है.
2: राजस्थान के पिलानी स्थित बिट्स पिलानी के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डॉक्टर विनय चमोला ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में नए पाठ्यक्रम और हैंड्स ऑन आईओटी टिंकरिंग लैब्स के जरिए मेट सुपरविजन और एआईओटी ब्लॉक्स जैसे वेंचर्स के जरिए विद्यार्थियों को अपने विचारों को समाधान में बदलने के लिए प्रेरित किया. तकनीकी उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर विनय चमोला को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है. ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित आईआईटी भुवनेश्वर में डॉक्टर श्रीकांत गुल्लापुड़ी मेटलर्जी और मटेरियल साइंसेस की शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं. कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, रियल लाइफ एप्लीकेशंस और एक्सपीरियंशियल लर्निंग के जरिए वे विद्यार्थियों की तकनीकी समझ को मजबूत करते हैं. शिक्षा कौशल और सामाजिक जरूरतों से जुड़ी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर श्रीकांत गुल्लापुड़ी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है. गुजरात के गांधीनगर स्थित आईआईटी गांधीनगर में विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच और नए समाधानों की क्षमता विकसित करने वाले शिक्षक हैं डॉक्टर मिथुन राधाकृष्ण. वे इंजीनियरिंग, साइंसेस और फाइनेंस जैसे अलग अलग क्षेत्रों की अवधारणाओं को जोड़कर विद्यार्थियों को नए और अनजाने सवालों पर सोचने के लिए प्रेरित करते हैं. मौलिक सोच और समस्या समाधान का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए डॉक्टर मिथुन राधाकृष्ण को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है. मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित IISER भोपाल में प्रोफेसर सौरभ दत्ता ने प्लांट बायोलॉजी के शिक्षण, शोध और आउटरीच के जरिए विद्यार्थियों को नई सोच और शोध की दिशा दी है. वो एम्पैथेटिक मेंटोरशिप और इंक्लूसिव लर्निंग इकोसिस्टम के जरिए विद्यार्थियों को सशक्त करते हैं. शिक्षण, शोध और समाज के प्रति अपने योगदान के लिए प्रोफेसर सौरभ दत्ता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है. मुंबई के आईआईटी बॉम्बे के डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज में प्रोफेसर विक्रम विशाल ने भूविज्ञान और जलवायु से जुड़े जटिल विषयों को शोध, प्रयोग और वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के जरिए समझने का नया तरीका विकसित किया. भारत की पहली कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज फील्ड लेबोरेटरी स्थापित की. भूविज्ञान और जलवायु समाधान में शिक्षा, शोध और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रोफेसर विक्रम विशाल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है. गुजरात के गांधीनगर स्थित नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जयराज सिंह सरवैया ने शिक्षा, शोध और उद्योग के बीच एक मजबूत सेतु तैयार किया है. उन्होंने फॉरेंसिक फार्मेसी, फूड फॉरेंसिक्स और मेडिकल डिवाइसेस जैसे तीन विशिष्ट क्षेत्रों में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. शिक्षा, शोध और इनोवेशन को रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट से जोड़ने के लिए प्रोफेसर जयराज सिंह सरवैया को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है. उत्तर प्रदेश के आईआईटी कानपुर के डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में प्रोफेसर शंकर प्रसाद रथ ने रसायन विज्ञान में शोध, शिक्षण और विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उनके स्वयं NPTEL पाठ्यक्रम ने उच्च शिक्षा में उनकी विशेषज्ञता को व्यापक बनाया. विद्यार्थियों की प्रतिभा और करियर को संवारने के लिए प्रोफेसर शंकर प्रसाद रथ को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है.

0: उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में डॉक्टर मनीषा निगम ने बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई को प्रयोग, समस्या समाधान और वास्तविक जीवन के उदाहरणों से अधिक प्रभावी बनाया। शिक्षा, शोध और सामाजिक सरोकारों को साथ लेकर चलने के लिए डॉक्टर मनीषा निगम को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। महाराष्ट्र के वर्धा स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज DMIHER में डॉक्टर अमर मोहन राव तकसांडे ने बाल चिकित्सा शिक्षा, शोध और मरीजों की देखभाल में उत्कृष्ट योगदान दिया है। उन्होंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन और पीडियाट्रिक एकोकार्डियोग्राफी के माध्यम से चिकित्सा प्रशिक्षण को मजबूत किया। डॉक्टर अमर तकसांडे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी स्थित एम्स मंगलगिरी में डॉक्टर अरुण बाबू ने पीडियाट्रिक्स के शिक्षण, शोध और चिकित्सा शिक्षा में नवाचार को आगे बढ़ाया है। 400 से अधिक साइंटिफिक पब्लिकेशंस और अनेक रिसर्च प्रोजेक्ट्स के साथ चिकित्सा शिक्षा और नवाचार को सशक्त बनाने के लिए डॉक्टर अरुण बाबू को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मणिपुर के इम्फाल स्थित मणिपुर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ डांस एंड म्यूजिक में डॉक्टर पुखराम बम लीलावती देवी ने 15 वर्षों से अधिक समय में नृत्य, संगीत और शोध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मणिपुर स्टेट कला अकादमी के यंग टैलेंट अवार्ड और प्रसार भारती के मणिपुरी डांस में टॉप ग्रेड से सम्मानित डॉक्टर पुखराम बम लीलावती देवी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: वाराणसी की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में प्रोफेसर आशुतोष मोहन ने 25 वर्षों से अधिक समय में मैनेजमेंट शिक्षा, शोध और अकादमिक नेतृत्व में उल्लेखनीय योगदान दिया है। मार्केटिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में विशेषज्ञता के साथ उन्होंने 50 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए। प्रोफेसर आशुतोष मोहन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। असम के गुवाहाटी स्थित गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में प्रोफेसर अंकुरन दत्ता ने 2 दशकों से अधिक समय में शिक्षा, मीडिया और सामुदायिक संवाद को इसी सोच के साथ आगे बढ़ाया। नॉर्थ ईस्ट भारत के पहले कम्युनिटी और वेब रेडियो स्टेशन की स्थापना कर सामुदायिक संचार, स्थानीय ज्ञान और सांस्कृतिक जुड़ाव को सशक्त बनाने के लिए प्रोफेसर अंकुरन दत्ता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित कर्नाटका संस्कृत यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर शिवानी वी ने संस्कृत के पारंपरिक अध्ययन को आधुनिक तकनीक और शोध से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया। संस्कृत को आधुनिक, सुलभ और नई पीढ़ी के लिए प्रासंगिक बनाने के लिए प्रोफेसर शिवानी वी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर राजीव चौधरी ने फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में शिक्षण, शोध और विद्यार्थी कल्याण को नई दिशा दी है। डिजिटल पेडागोजी और अवेयर इंक्लूजन अफेक्शन AIA मॉडल के जरिए उन्होंने विद्यार्थियों में केवल याद करने की बजाय क्रिटिकल थिंकिंग और रिसर्च स्किल्स को विकसित किया। शिक्षा, शोध और विद्यार्थी कल्याण को सशक्त बनाने के लिए प्रोफेसर राजीव चौधरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित MEI पॉलिटेक्निक में डॉक्टर विश्वनाथ एजेस पिछले 32 वर्षों से सिविल इंजीनियरिंग शिक्षा में इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिकल लर्निंग को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने मल्टीडिसिप्लिनरी नॉलेज, डिजिटल लर्निंग और स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग को बढ़ावा दिया। तकनीक आधारित और रोजगार से जुड़ी शिक्षा को मजबूत करने के लिए डॉक्टर विश्वनाथ एजेस को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। तमिलनाडु के कोयंबटूर स्थित BSG पॉलिटेक्निक कॉलेज में डॉक्टर शशि कलायस डिप्लोमा इंजीनियरिंग एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए इंडस्ट्री कोलैबोरेशन और आउटकम बेस्ड लर्निंग को आगे बढ़ा रही है। 110 से अधिक इंडस्ट्री अलाइंड एक्सपेरिमेंट्स और 11 इंडस्ट्री MOUs के जरिए उन्होंने विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल लर्निंग के अवसर दिए। विद्यार्थियों के कौशल और अवसरों को बढ़ाने के लिए डॉक्टर शशि कलायस को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।

0: तमिलनाडु के इरोड स्थित शक्ति पॉलिटेक्निक कॉलेज में डॉक्टर कन्नन रथिनम ने पॉलिटेक्निक शिक्षा में सीखने का एक व्यावहारिक मॉडल विकसित किया। उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप सैद्धांतिक अवधारणाओं को पीयर लर्निंग के माध्यम से समझने योग्य बनाया। पॉलिटेक्निक शिक्षा में नवाचार, शोध और अनुभवात्मक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर कन्नन रत्नम को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। महाराष्ट्र के सोलापुर स्थित गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में डॉक्टर संदीपन प्रल्हाद नारोटे ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और टेलीकम्युनिकेशंस की शिक्षा को टेक्नोलॉजी इनेबल्ड और एक्सपीरियंशियल लर्निंग से मजबूत किया है। उनकी टीचिंग लर्निंग अप्रोच से 5000 से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिला है। शिक्षण, शोध और संस्थागत विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर संदीपन प्रल्हाद नारोटे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। केरल के आईटीआई अरिकोड में श्री हरीश ए ने इलेक्ट्रिकल स्किल्स ट्रेनिंग को नवाचार और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ा है। उनकी सबसे खास पहल कैंडेला एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसे उन्होंने आईटीआई विद्यार्थियों के साथ स्थापित कर स्किल लर्निंग को वास्तविक उत्पादन और एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ा और उद्यमिता के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए श्री हरीश ए को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थित गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में फिटर ट्रेड के इंस्ट्रक्टर श्री जगमोहन ने कौशल प्रशिक्षण को गुणवत्ता, उद्योग की जरूरतों और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ा है। कोविड 19 के दौरान मास्टर ट्रेनर के रूप में उन्होंने ट्रेनीज को ऑक्सीजन प्लांट्स के संचालन का प्रशिक्षण देकर कौशल को एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा से भी जोड़ा। श्री जगमोहन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। महाराष्ट्र के धाराशिव स्थित गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में श्री किरण प्रकाश झरकर ने कौशल प्रशिक्षण को पुस्तकों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और व्यावहारिक संसाधनों के एक जुड़े हुए लर्निंग इकोसिस्टम में बदला है। उनकी पेटेंट प्राप्त स्किल बुक कनेक्टिंग ट्रेनीज टू स्किल्स और स्किल बुक मोबाइल एप्लीकेशन ने प्रैक्टिकल लर्निंग और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड रिसोर्सेज से जोड़ा, जिसके लिए श्री किरण प्रकाश झरकर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित गवर्नमेंट आईटीआई टॉलीगंज में वेल्डर ट्रेड के इंस्ट्रक्टर श्री संदीप बनर्जी ने कौशल प्रशिक्षण को आधुनिक तकनीक और व्यावहारिक सीखने से जोड़ा है। 300 से अधिक ट्रेनीज को कॉम्पिटेंसी बेस्ड और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देने के साथ उन्होंने नए वेल्डर इंस्ट्रक्टर्स के लिए मास्टर ट्रेनर के रूप में भी योगदान दिया है। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए श्री संदीप बनर्जी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। गुजरात के बिलीमोरा स्थित इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ऑटोमोबाइल ग्रुप के सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टर श्री राजेश कुमार एम पटेल ने वाहन तकनीक के प्रशिक्षण को नवाचार और रोजगार से जोड़ा है। ट्राइसिकल ईवी विद स्टीयरिंग जनरेशन ने क्षेत्रीय स्किल कंपटीशन में तीसरा स्थान हासिल किया। ऑटोमोबाइल स्किल्स और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए श्री राजेश कुमार एम पटेल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। राजस्थान के चौमू में स्थित गवर्नमेंट आईटीआई में रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के सीनियर इंस्ट्रक्टर श्री हीरालाल शर्मा ने उनके विकसित किए गए स्प्लिट एसी और डीप फ्रीजर फॉल्ट सिमुलेटर्स के जरिए विद्यार्थी तकनीकी खराबियों की पहचान और ट्रबल शूटिंग का व्यावहारिक अभ्यास करते हैं, जिसके लिए श्री हीरालाल शर्मा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: महाराष्ट्र के नासिक स्थित गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट त्रिंबकेश्वर आदिवासी में फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी की क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर श्रीमती अर्चना राकेश जाधव ने आदिवासी और ग्रामीण युवाओं को फैशन और अपैरल स्किल्स के माध्यम से रोजगार और उद्यमिता से जोड़ा है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए श्रीमती अर्चना राकेश जाधव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित गवर्नमेंट डिविजनल आईटीआई में COPA HIVI की ट्रेनिंग ऑफिसर श्रीमती रीना गुप्ता ने प्रैक्टिकल लर्निंग के माध्यम से वे विद्यार्थियों को कंप्यूटर ऑपरेशन और बेसिक प्रोग्रामिंग जैसे कौशलों में प्रशिक्षित करती हैं। दिव्यांग युवाओं को डिजिटल कौशल और आत्मनिर्भरता से सशक्त बनाने के लिए श्रीमती रीना गुप्ता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाए।

0: करता है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित गवर्नमेंट आईटीआई टॉलीगंज में श्री सोमेन पंडित ने नई तकनीकों के कौशल प्रशिक्षण को प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री ओरिएंटेड लर्निंग से जोड़ा है। उन्होंने 160 से अधिक लर्नर्स को ड्रोन टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षित किया। नई तकनीकों और भविष्य के रोजगार के अवसरों से युवाओं को जोड़ने के लिए श्री सोमेन पंडित को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। असम के नॉर्थ ईस्ट स्किल सेंटर असम स्किल डेवलपमेंट मिशन में श्रीमती तुलिका कलिता ने अपने 20 वर्षों के अनुभव से युवाओं को वैश्विक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए तैयार किया है। उन्होंने 1400 से अधिक लर्नर्स को वर्कप्लेस रेडिनेस कम्युनिकेशन एटिकेट और प्रोफेशनल सर्विस स्किल्स से प्रशिक्षित किया, जिसके लिए श्रीमती तुलिका कलिता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। पंजाब के लुधियाना स्थित नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मशीनिस्ट ट्रेड के ट्रेनिंग ऑफिसर श्री संजय कुमार ने प्रिसिशन मशीनिंग और एडवांस्ड टेक्निकल स्किल्स के माध्यम से युवाओं को उच्च स्तरीय करियर के लिए तैयार किया है। उनके विद्यार्थी DRDO, इसरो, बार और इंडियन रेलवेज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों तक पहुंचे हैं। श्री संजय कुमार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वुमेन में ट्रेनिंग ऑफिसर श्रीमती ज्योति बाला राठौर ने उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय परीक्षाओं और स्किल कॉम्पिटिशन्स में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। कौशल और रोजगार के अवसरों के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए श्रीमती ज्योति बाला राठौर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर में इंजीनियर ट्रेनिंग श्री प्रणब कुमार चौधरी ने कौशल विकास को बड़े स्तर पर प्रशिक्षण, गुणवत्ता और इंडस्ट्री रेडी लर्निंग से जोड़ा है। उन्होंने स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप व्यापक स्तर तक पहुंचाया। कौशल, गुणवत्ता और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण को व्यापक स्तर पर सशक्त बनाने के लिए श्री प्रणब कुमार चौधरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
2: और माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू शिक्षक दिवस 2026 के अवसर पर उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के शिक्षकों या संकाय सदस्यों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। माननीय राष्ट्रपति अब अपने स्थान से खड़े होकर पुरस्कार देने के लिए आगे आते हुए आपको बता दें, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रित किए गए थे, जिनमें जन भागीदारी के तहत इसमें
3: प्रोफेसर अवलोकिता अग्रवाल आईआईटी रुड़की की
2: प्रोफेसर अग्रवाल अपना पुरस्कार ग्रहण करने माननीय राष्ट्रपति के सामने आ रही हैं। इन्होंने वस्तुकला और निर्मित पर्यावरण के क्षेत्र में
4: फ्रॉम आईआईटी हैदराबाद प्रोफेसर कीर्ति चंद्र साहू and he works on chemical engineering and has trained many students.
3: Dr. Vinay Chamola
2: aur Professor Vinay Chamola jinhone electrical aur electronics engineering ke kshetra mein kaam kiya hai BSc Plani se
3: Dr. Srikant Golapudi IIT Bhubaneswar
4: from IIT Bhubaneswar Dr. Srikant Golapudi who works in metallurgical engineering
3: Dr. Mithun Radhakrishna IIT Gandhinagar
2: Dr. Mithun Radhakrishna जो कि केमिकल इंजीनियर है इस क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया जा रहा है IIT
3: प्रोफेसर सौरभ दत्ता IISER भोपाल
4: फ्रॉम IISER भोपाल प्रोफेसर सौरभ दत्ता रिसीव्स द अवार्ड फ्रॉम ऑनरेबल राष्ट्रपति
3: प्रोफेसर विक्रम विशाल IIT बॉम्बे
2: पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में कार्य के लिए प्रोफेसर विक्रम विशाल को पुरस्कार दिया जा रहा है बॉम्बे महाराष्ट्र से है
3: डॉक्टर जयराज सिंह सरवैया NFSU गांधीनगर
4: For his work in forensic sciences, Dr. Jairaj Sarvaiya of the National Forensic Science Laboratory,
3: Professor
4: University, Gujarat.
3: Professor Shankar Prasad Rath, IIT Kanpur.
2: Rasayanik Vigyan Kshetra ke liye Professor Shankar Prasad Rath ko puraskar diya ja raha hai, jo IIT Kanpur, Uttar Pradesh se hai.
3: Dr. Manisha Nigam, Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University, Uttarakhand.
4: Hemvati Nandan Bahuguna University, Uttarakhand receives her award in the field of biochemistry from the
3: Dr. Amar Mohan Rao Dasande.

0: स्कूल एजुकेशन एंड
1: ये
0: लिटरेसी
1: हमारा
0: एंड
1: परम
0: स्किल
1: सौभाग्य
0: डेवलपमेंट
1: है
0: एंड
1: कि माननीय
0: एंटरप्रेन्योरशिप एंड
1: राष्ट्रपति
0: द
1: महोदय
0: सेक्रेटरी
1: आज
0: डिपार्टमेंट ऑफ
1: यहाँ
0: हायर
1: थे। हम
0: एजुकेशन।
1: अपने
0: और अब
1: आशीर्वाद
0: समय आ
1: देते
0: गया है
1: हैं
0: जब माननीय
1: उनका जीवन
0: राष्ट्रपति
1: तथा
0: ये
1: व्यक्तित्व
0: पुरस्कार प्राप्त करने
1: स्वयं
0: वाले
1: एक शिक्षा है।
0: सभी शिक्षकों को
1: माननीय आपकी अत्यंत
0: संबोधित करेंगी।
1: महत्वपूर्ण उपस्थिति में ही
0: राष्ट्रपति
1: हम सब
0: का
1: के लिए
0: संबोधन
1: ऊर्जा
0: शिक्षा के
1: प्रेरणा
0: क्षेत्र में काम करने वाले
1: हर पल की
0: लाखों
1: यात्रा में
0: शिक्षकों के
1: माननीय
0: लिए
1: राष्ट्रपति महोदय के
0: प्रेरणादायी
1: शिक्षण
0: संदेश
1: में
0: होगा।
1: सबका मार्गदर्शन
0: श्रोताओं,
1: करें। हम
0: सभी
1: सबको सम्मेलन
0: शिक्षकों ने
1: करें। जोरदार
0: तालियों
1: तालियां
0: के साथ
1: माननीय राष्ट्रपति
0: माननीय
1: महोदय
0: राष्ट्रपति
1: के
0: का
1: लिए
0: एंड अ
1: स्वागत करें।
0: स्टैंडिंग ओवेशन फॉर द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। नाउ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट विल एड्रेस द गैदरिंग।
2: इस समारोह में उपस्थित केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी एवं डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी, मंचासीन सभी सचिवगण, सभी शिक्षकगण, देवियों और स्वजन सभी को नमस्कार। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित आज के सभी पुरस्कार विजेताओं को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है वो समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है। शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है। मुझे अपने शिक्षकों का सादर स्मरण होता है। उनके स्नेह और मार्गदर्शन के बल पर ही मैं अपने जीवन यात्रा में आगे आकर आपके सामने खड़ी हूँ। साथ ही मुझे अपने विद्यार्थी भी याद आते हैं जिन्हें मैंने ओडिशा के रायरंगपुर में स्थित श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में पढ़ाया था। मैंने अपने विद्यार्थियों से भी बहुत कुछ सीखा है। उन विद्यार्थियों के प्यार को मैं अपने जीवन के बहुत बड़ी उपलब्धियां मानती हूँ। मैं भी कभी शिक्षक समुदाय की सदस्य रही हूँ, इससे मुझे विशेष सार्थकता का अनुभव होता है। देवियों और स्वजन, सावित्रीबाई फुले आधुनिक युग में विद्यालय में पढ़ाने वाले भारत की पहली शिक्षिका के रूप में जाने जाती है। बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्रांतिकारी पहल की थी और 19वीं सदी में बालिका विद्यार्थियों की स्थापना की थी, विद्यालय की स्थापना की थी। आज के दिन क्रांति ज्योति स्वरूपा महान शिक्षिका सावित्री बाई फुले की स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। 20वीं सदी के आरंभ में पश्चिम बंगाल के बोलपुर जिले में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की तथा ओडिशा के पुरी जिले में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास ने वन विद्यालय यानी ओपन एयर स्कूल की स्थापना की थी। उन विद्यालयों की स्थापना के पीछे ये उद्दात विचार था कि प्रकृति की गोद में विद्यार्थियों का सहज विकास होता है। देश को बहुआयामी योगदान देने वाले यथा सर्वजनात्मक शिक्षा के प्रति विशेष रूप से समर्पित उन विभूतियों को मैं सादर नमन करती हूँ। इस सभागार में लद्दाख से लेकर अंडमान निकोबार आइलैंड तक तथा अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक पूरे देश में शिक्षण के श्रेष्ठ प्रतिमान स्थापित करने वाले शिक्षक उपस्थित है। यह प्रसन्नता की बात है कि पुरस्कार विजेता में गांव के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या अधिक है। मुझे आशा है कि इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं की अध्यापन एवं प्रशिक्षण पद्धतियां और उपलब्धियां उन शिक्षकों को भी शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करेगी। पुरस्कार विजेताओं के योगदान और उपलब्धियां पर केंद्रित फिल्मों को देखकर मेरा ये विश्वास और भी दृढ़ हुआ है कि निष्ठावान शिक्षक अग्रिम पंक्ति के राष्ट्र निर्माता होते। आज पुरस्कृत सभी शिक्षकों के समान रूप से प्रभावशाली और अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए, लेकिन समय के

करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि सोच के बल पर छोटे से छोटे स्थान पर प्रबुद्ध शिक्षक और जिज्ञासु विद्यार्थी उच्च स्तरीय पाठन पठन का आधुनिक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता होती है कि ये सभागार में उपस्थित शिक्षकों ने ऐसे प्रेरक प्रयासों से शिक्षण कार्यों को नए आयाम दिए हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूलों, उच्च शिक्षण संस्थानों एवं पॉलिटेक्निक्स में अध्यापन करने वाले श्रेष्ठ शिक्षकों तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा चुने गए सुयोग्य प्रशिक्षकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। देश के विकास में एकेडमिक एक्सेलेंस, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत अधिक महत्व है। भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के साथ साथ स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित करना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता में से शामिल है। यहाँ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कृत आचार्यगण उपस्थित है। उनके लिए तथा पूरे देश के आचार्यों के लिए उच्च शिक्षा में भारत का गौरवशाली इतिहास लक्ष्य भी प्रस्तुत करना है और कसौटी भी। वेंगसान ने लिखा है कि नालंदा विक्रमशिला में पढ़ाने वाले आचार्यों का यश दूर दूर के देशों तक फैल चुका था। उनका चरित्र पूर्णतः निर्मल और अनिंदनीय था। आचार्यगण जानते थे कि समुद्रों और पर्वतों के को पार करके अनेक कष्ट सहन करके विदेशों के छात्र अनेक उनके पास आते थे और ज्ञान पिपासा लेकर वो अपने आप को संतुष्ट लाभ करते थे। भारत के विश्वविख्यात आचार्यों की परंपरा को नोबेल पुरस्कार विजेता आचार्य सी वी रमन जैसे शिक्षकों ने आधुनिक युग में आगे बढ़ाया है। वे अपने विद्यार्थियों के साथ खूब घुल मिलकर मॉडर्न फिजिक्स के विभिन्न विषयों पर चर्चा करते थे। जो विद्यार्थी उनसे कोई अच्छा प्रश्न करते थे तो वे पुस्तकों से हटकर अपने विलक्षण अध्यापन से ऐसे जिज्ञासा जागृत करते थे कि उनके विद्यार्थी उन प्रश्नों के माध्यम से विश्व के महान वैज्ञानिकों के मूल ग्रंथों में अवगहन करने जानते थे। देवी और स्वजन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि बच्चों की देखभाल करना पौधों को जोर से सींचने जैसे बराबर है। स्कूल एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था का आधार है। ज्ञान और कौशल तो कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु बचपन में ही सदाचार की शिक्षा देना अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। आरंभिक कक्षा में बच्चों के बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास पर निष्ठापूर्वक ध्यान देकर हमारे शिक्षक अच्छे विद्यार्थियों और कर्तव्यनिष्ठा नागरिकों की भावी पीढ़ियां तैयार करते हैं। विद्यार्थियों ही शिक्षकों की पहचान होते हैं। विद्यार्थी अपने शिक्षकों द्वारा पढ़ाया गया पाठ्यक्रम भले ही भूल जाए, लेकिन उनके व्यवहार को ये सदैव याद रखते हैं। अनेक विद्यार्थी आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिसरों से आते हैं। कुछ अनेक परिवार में पहली पीढ़ी के विद्यार्थी होते हैं। कुछ विद्यार्थी गांव के किसी सामान्य स्कूल से शहर के बड़े स्कूल में आते हैं और थोड़ा असहज हो जाते हैं। कुछ विद्यार्थी स्वभाव से ही संकुचित होते हैं। कुछ विद्यार्थी में बहुत प्रतिभा होती है, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है तथा कुछ विद्यार्थियों को चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो किसी कारण से कोई भी कमी महसूस करते हैं, उनमें आत्मविश्वास जगाना और उन्हें आगे बढ़ाना शिक्षकों का विशेष दायित्व होना चाहिए। संस्कृत भाषा के शब्द उद्धार का अर्थ होता है खींचकर बाहर निकालना या नीचे से ऊपर ले जाना। विद्यार्थियों का उद्धार करने का
उन्हें

0: अवसर केवल शिक्षकों को ही उपलब्ध होता है। हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्श को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था, अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो। मैं चाहूंगी कि हमारे शिक्षक अपने स्नेह और समर्पण से सभी विद्यार्थियों में ज्ञान, प्रेरणा, नैतिकता और संवेदनशीलता का संचार करें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।
1: अपने संबोधन में शिक्षा और शिक्षा की भूमिका के महत्व को रेखांकित किया माननीय राष्ट्रपति।
2: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो समारोह का समापन किया जाए।
1: और अब राष्ट्रगान
3: निवेदन है। राष्ट्रगीत तथा राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

0: the Honorable President of India doing namaskar to all the awardees and other dignitaries who are present at the plenary hall of the Vigyan Bhavan. And the Honorable President of India is now departing from the plenary hall of Vigyan Bhavan. And the Minister for Education, the Ministers of State for Education, and the Departmental Secretaries of the Department of School Education and Literacy, the Department of Higher Education, and the Department of Skill and Entrepreneurship, now escorting the Honorable Rashtrapati ji towards from the plenary hall of the Vigyan Bhavan. And as the Honorable Rashtrapati ji in her address said, that the society which respects teachers is indeed a progressive one, and she congratulated all the winners of the awards. She said that teachers from Ladakh to the Andaman and Nicobar Islands and from Arunachal Pradesh to Gujarat are all playing a pivotal role in furthering education and nurturing our students. She hailed the efforts of the Department of School Education, Higher Education and Skills and Entrepreneurship. She expressed the confidence that India will emerge as a knowledge economy and also the skill capital of the world. She mentioned about the reputation of the teachers of India's ancient Nalanda University, which spread far and wide and attracted students from all over the world. And she said that in the last 12 years, the primary school dropout rate has come down to almost nil.
1: आज के इस समारोह में हमें एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है, राष्ट्र निर्माण केवल बड़ी परियोजनाओं से नहीं होता, राष्ट्र निर्माण कक्षा में होता है। श्रोताओं, अब समारोह अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। आज का ये आयोजन हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि शिक्षक केवल भविष्य देश के नागरिक नहीं बनाते, वे भविष्य भारत का निर्माण भी करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किए गए सभी शिक्षक हमारे लिए प्रेरणा है। उनके विद्यालयों को बधाई, उनके विद्यार्थियों को बधाई, उनके परिवारों को बधाई और भारत के प्रत्येक शिक्षक को हमारा सादर नमन। इसी भावना के साथ विज्ञान भवन नई दिल्ली से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 का ये विशेष प्रसारण संपन्न होता है। इस प्रसारण को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया अशोक कुमार मिश्रा और बाबूलाल मीणा ने। हमारे ओबी इंचार्ज थे वीके तोमर और प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार। मैं शोएसियार खान अपने साथी कमेंटेटर कौशिक राय के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलता हूं। नमस्कार।
2: अभी आपने दिल्ली के विज्ञान भवन से भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित किए राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार समारोह का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे शोएसियार खान हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में।
3: यू वर लिसनिंग टू अ लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन सेरेमनी ऑफ द नेशनल अवार्ड टू टीचर्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ग्रेशियस प्रेजेंस ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। Our commentators were

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विकसित भारत का सपना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से ही साकार होगा। उन्होंने 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने की अपील की। उन्होंने बच्चों का स्क्रीन समय कम करने, खेलकूद और बाहरी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव अभियान जारी। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को 95 टन राहत सामग्री भेजी और अधिक राहत सामग्री के साथ बेली ब्रिज भेजे जाएंगे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी से होगा। और T20 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज रात भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वो सही मायनों में प्रगतिशील समाज होता है।
1: हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक अग्रिम पंक्ति के राष्ट्र निर्माता हैं।
1: द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है वो समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है। शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को ये पुरस्कार दिए गए। उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इनमें केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों के 12, राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 5 तथा पॉलिटेक्निक के 4 शिक्षक और संकाय सदस्य शामिल हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में देशभर के शिक्षकों को उनकी निस्वार्थ सेवा और भारत के भविष्य को आकार देने में उनके योगदान के लिए नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में मुलाकात की झलकियां साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। इसके लिए शिक्षकों को अपने भीतर के बच्चे को भी जीवित रखना होगा। श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई।
1: एक विषय है स्क्रीन टाइम, अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा, खेल कूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, अरे एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकता। और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए।
0: प्रधानमंत्री ने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की।
1: ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा ऐसा नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है। क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस, उसके कारण क्या भय है? प्रकार से मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए, और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते।
0: प्रधानमंत्री ने स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता का भी उल्लेख किया।
1: मैं काशी का सांसद हूँ, तो मैंने वहाँ एक अभियान लिया ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का, और मुझे खुशी है कि इन दिनों महिलाएं सामने से आकर के अपने विषय में चेकअप करा, पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। दूसरा एक अच्छा अनुभव आया, अभी तो एक दिन में मैक्सिमम लोगों का चेकिंग करने का ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने रजिस्टर किया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए बच्चों को कक्षा से बाहर ले जाने और उन्हें वास्तविक जीवन के कौशल तथा विभिन्न कार्यों से जोड़ने के महत्व पर जोर दिया। गृह मंत्री अमित शाह, शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देशवासियों और शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि शिक्षक पीढ़ियों से विद्यार्थियों को ज्ञान की राह दिखा रहे हैं और देश की निरंतर प्रगति में योगदान दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक वीडियो संदेश में कहा कि शिक्षक ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास के साथ छात्रों के भविष्य को सशक्त बनाते हैं।
2: इन शिक्षकों ने अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग तरीकों से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। किसी ने शिक्षण में नया प्रयोग किया है, किसी ने तकनीक का प्रभावी उपयोग किया है, किसी ने वंचित और कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के लिए काम किया, तो किसी ने विज्ञान, खेल, कला और कौशल के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने का काम किया है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIR News हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे समारोह को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। यहाँ वाणिज्य, अर्थशास्त्र और प्रबंधन की पढ़ाई होती है। कॉलेज की स्थापना 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का मंच कल शुरू हो गया। शिखर सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां और सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। आज मोटर कारक्रीट का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक मार्गों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। 22 से 28 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में वे भारत का पक्ष रखेंगे। ये उच्च स्तरीय सत्र ऐसे समय हो रहा है जब दुनिया कई भू राजनीतिक संघर्षों और बढ़ते आर्थिक दबावों का सामना कर रही है। हॉर्मुस जलडमरू मध्य में व्यवधान के कारण खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतें भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित त्रिशूली बाजार क्षेत्र से 5 वर्षीय बच्चे सहित 3 और भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इससे शरणार्थियों की कुल संख्या 169 हो गई है। एक रिपोर्ट।
4: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं, वहीं 1907 भारतीय चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास इन शरणार्थियों को हवाई मार्ग से वापस लाने में सहायता कर रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा हुआ नहीं है। प्रवक्ता ने बताया कि 26 अगस्त को विनाशकारी बाढ़ के बाद से भारत ने नेपाल को लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार सहायता जारी रखेगा। आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर अधिक फोरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अतिरिक्त सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। बेली ब्रिज पूर्व निर्मित और मॉड्यूलर स्टील पुल होता है, जिसे कम समय में और बिना भारी मशीनों के आसानी से जोड़ा या स्थापित किया जा सकता है। इस बीच नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या कर 1344 हो गई है। खोज और बचाव अभियान जारी है। लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने तेलंगाना में एक महिला मंत्री को हटाए जाने को अन्यायपूर्ण बताया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में डॉक्टर त्रिवेदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की चुप्पी पर सवाल उठाया। झारखंड में प्रश्न पत्र लीक का उल्लेख करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि ये सिर्फ प्रश्न पत्र लीक नहीं बल्कि प्रश्न पत्रों की लूट थी।
5: जो कुछ झारखंड में तथ्य प्रकाश में आया है उसने यह साफ किया है कि ये पेपर लीक नहीं बल्कि पेपर लूट है, और इस लूट की छूट कौन दे रहा है ये कम से कम राहुल गांधी जी को बताना चाहिए। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि जितने भी राजनीतिक दल दिल्ली में परीक्षा के विषय को लेकर दहाड़ और चिंगाड़ रहे थे, झारखंड के मुद्दे के ऊपर 3 बंदर हो गए हैं।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषय की पुनर्परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। अंग्रेजी की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। वाणिज्य की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। इन तीनों विषयों की परीक्षा पेपर में कुछ गलतियों की शिकायतों के बाद दोबारा आयोजित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। लगातार नदियों के उफान पर रहने से नए क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा है। एक रिपोर्ट।
6: बिहार में गंगा, गंडक, कोसी समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। नदियों में उफान से 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। पटना समेत 14 जिलों में हालात गंभीर बने हुए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर बह रही है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि इसके गांधी घाट गेज स्थल पर नया उच्च जल स्तर सृजित होने की आशंका है। इसके चलते नदी के प्रवाह क्षेत्र विशेषकर दियारा क्षेत्रों दबाव बढ़ सकता है। विभाग ने संबंधित जिलों को आपदा के मद्देनजर सभी जरूरी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज राष्ट्रीय राजधानी के अलग अलग हिस्सों में हल्की से तेज बारिश हुई। और अब बात खेलों की। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी आज शेंजन में मेंस डबल्स सेमीफाइनल में मलेशियाई जोड़ी नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी कियोंग से खेलेगी। भारतीय जोड़ी ने कल क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रूप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन को हराया था। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। महाराष्ट्र में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा दही हांडी उत्सव आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: मुंबई और आसपास के जिलों में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा पारंपरिक उत्सव

0: ही हंडी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस आयोजन में युवा प्रतिभागी मानव पिरामिड बनाकर ऊंचाई पर लटके दही, दूध या मक्खन से भरी मटकी फोड़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 1,60,000 गोविंदाओं के बीमा कवरेज की व्यवस्था भी की है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विकसित भारत का सपना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से ही साकार होगा। उन्होंने 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव अभियान जारी। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को 95 टन राहत सामग्री भेजी और अधिक राहत सामग्री के साथ बिलीब्रिज भेजे जाएंगे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी से होगा। और T20 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज रात भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: युवक मित्र मैत्रिणींसाठी कार्यक्रम युववाणी आता आपण ऐकलं आकाशवाणी मुंबई केंद्राच्या अस्मिता वाहिनीवरून. ही आकाशवाणी जळगाव केंद्राची निर्मिती होती. आपण ऐकत आहात आकाशवाणी मुंबई केंद्राची अस्मिता वाहिनी. यानंतर ठीक 6 वाजता हिंदी समाचार. हे हिंदीतून दिलं जाणारं बातमीपत्र. आणि 6:05 इंग्रजी समाचार. हे इंग्रजीतून दिलं जाणारं बातमीपत्र. ही दोन्ही बातमीपत्रं आम्ही आकाशवाणी दिल्ली केंद्रावरून सहक्षेपित करीत आहोत. सुरुवातीला ठीक 6 वाजता हिंदी समाचार.
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत संभव है. शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वही सही मायने में प्रगतिशील समाज है. उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉप आउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है.
2: हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्शों को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है. हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था. अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है. ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है. इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा.
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत को विश्व की कौशल राजधानी के रूप में स्थापित करना और साथ ही ज्ञान शक्ति बनना देश की प्राथमिकता है. इस अवसर पर 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए. राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है. कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई. उन्होंने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की.
3: ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा सा नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है. क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस, उसके कारण क्या भय है? प्रकार से मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा. बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते.
1: सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की. ये व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए नियमित मंच प्रदान करेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत शिलालेखों और समुद्री व्यापार से लेकर गणित तक अपनी विरासत का अध्ययन करने और उसे दोबारा प्राप्त करने में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है. नई दिल्ली में वार्षिक इतिहास पुरस्कार समारोह और डॉ SL भैरप्पा स्मृति व्याख्यान में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर है और अपनी विरासत को समझने के लिए अब किसी और की अनुमति का इंतजार नहीं करता. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने सेवा नियमों को कर्मचारियों और उनके परिवारों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया. डॉ सिंह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम की CSS शील्ड पहल का शुभारंभ करते हुए कहा कि ये पहल कार्मिक मंत्रालय के उस व्यापक प्रयास के अनुरूप है जिसके तहत सरकारी सेवा प्रणालियों को कर्मचारियों और उनके परिवारों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जा रहा है. त्रिपुरा में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है. शुरुआती चरण में प्रशिक्षण और योजना तैयार करने का काम होगा. घर घर सत्यापन 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक किया जाएगा. नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,344 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में बचाव अभियान जारी है, जबकि लगभग 5,000 लोग अब भी लापता हैं। अब तक 13,000 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी क्योंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। President Draupadi Murmu has said a Vikasit Bharat will only be possible with quality education. She said a society that respects their teachers is a progressive society in right terms. The president was addressing the National Teachers Award Ceremony 2026 in New Delhi on the occasion of Teachers Day today. The president stressed that education is the most effective means of realizing the ideal of equality of opportunity enshrined in our constitution. She said the achievement of negligible primary school dropout rate has been made possible through the efforts of teachers.
2: हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो।
0: Chief Justice of India, Justice Suryakant, today emphasized on the importance of the culture of healthy disagreement and deliberation. As a part of the ongoing BRICS Chief Justices Forum in New Delhi, Justice Suryakant addressed the delegations from BRICS member states and partner countries. He emphasized the timely and predictable delivery of justice is necessary. Justice Suryakant reminded how Nalanda University used to be the most eminent educational center where students and researchers from all over the world used to be admitted without any discrimination or barriers. He added that BRICS should also be known as the living Nalanda University. Finance Minister Nirmala Sitharaman has said India is increasingly confident in studying and reclaiming its own heritage, from inscriptions and maritime trade to mathematics. Addressing the annual History Prize Award ceremony and the Dr. S. L. Bhairappa Memorial Lecture in New Delhi today, the Finance Minister said decolonization should mean expanding the historical archive, bringing in more languages and giving a wider circle of scholars a voice in interpreting the country's past. She said India is now self-assured and no longer waits for anyone else's permission to study and understand its own heritage. The chairperson of the African Union Commission, Mahmoud Ali Yusuf, has welcomed the United Nations General Assembly resolution that encourages the use of the Equal Earth Cartographic Projection in maps worldwide to replace the Mercator projection widely used so far, which distorts the sizes of continental landmasses. The UN General Assembly has voted to replace the traditional world map with one that reflects the size of Africa more accurately. The Correct the Map resolution, sponsored by Togo and backed by African Union members, passed with the support of 164 nations, including India. Floods continue to affect normal life in several parts of Bihar. The Ganga and several other major rivers are flowing above the danger mark at various places. The administration has intensified relief and rescue operations on a war footing to assist the affected people. In Patna, the water level of the Ganga at Gandhi Ghat, Banka Ghat and Bandarak is flowing above the highest flood level. More than 1,20,000 people have so far been provided meals through community kitchens. The death toll from the devastating flash floods in Nepal has risen to 1,344. Rescue operations are underway in 8 affected districts, while around 5,000 people remain missing. More than 13,000 people have been rescued so far. In Nuwakot district, a 60-year-old woman was rescued alive after being trapped for 10 days under the debris of a 4-story house. She was shifted to hospital for treatment. Nepal has begun using DNA testing to identify victims, as many bodies have been severely damaged or recovered in parts.
4: So far, only 96 bodies have been identified and handed over to their families. In women's cricket, India will take on arch rivals Pakistan in the final Group A clash of T20 Asia Cup at the Dubai International Stadium tonight. The match will begin at 8 p.m. Indian Standard Time. The Melghat and Panch Tiger Reserves in Maharashtra have emerged as India's most successful sites for the reintroduction of captive-bred vultures, recording encouraging survival rates. And with that, we end this news bulletin.
0: प्रसार भारतीच्या वेब्स ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन एआर ॲप सहित 558 किलो हर्ट्झवर आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी. संध्याकाळचे 6:10 आणि 10 सेकंद झाले आहेत. प्रसारित करत आहोत गीतबहार चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला ऐकूया एक फुल चार हाफ या चित्रपटातील लता मंगेशकर, आशा भोसले आणि रवींद्र साठे यांनी गायलेलं विवेक आपटे यांचं गीत. संगीत आहे अनिल मोहिले यांचं.

0: प्रसार भारतीच्या वेळेस ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन एआर ॲप सहित 558 किलोहर्ट्सवर आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी. यानंतर ठीक 7 वाजता प्रादेशिक बातम्या.
1: इससे बेहतर कुछ नहीं.
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ. अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें.

0: 18 से 40 वर्ष तक के किसान
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: शेतकरी बांधवांनो, या कार्यक्रमाचे सादर करते होते रोशन जाधव। हा कार्यक्रम कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित करण्यात आला होता। ही आकाशवाणी मुंबई केंद्राची निर्मिती होती।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया, वैश्विक अनिश्चितता के बीच 7.8% की जीडीपी वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भावी पीढ़ी के उद्यमियों और वैज्ञानिकों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करने में शिक्षकों की भूमिका पर बल दिया। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी। महाराष्ट्र के मेलशेत और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के लिए सबसे सफल पुनर्वास स्थल बना। उत्तरी उत्तर पूर्वी राज्यों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, बिहार, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में सोमवार तक तेज बारिश के आसार। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की 7.8% की तिमाही वृद्धि आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत अवरोध से नीतिगत गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में SRCC के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि SRCC ने वर्षों से छात्रों की कई पीढ़ियों को सीखने, आगे बढ़ने और समाज में बदलाव लाने का अवसर दिया है।
1: जब कोई इंसान 100 वर्ष जीता है तो उसे अनुभवों का सागर माना जाता है, और जब कोई संस्थान 100 वर्ष का होता है तो वो उपलब्धियों और प्रेरणाओं का

0: महासागर हो जाता है। अपनी 100 वर्षों की इस यात्रा में एसआरसीसी ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्जवल भविष्य से जोड़ा है। जो आए उन्होंने पढ़ा और जो निकले वो गढ़े हुए निकले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 14 करोड़ भारतीय मिलकर भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे। इससे पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने अपने भाषण में एसआरसीसी द्वारा वर्षों से उच्च स्तर बनाए रखने की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार में कुशल मानव संसाधनों की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने इसे युवा आबादी के लिए एक अवसर बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एसआरसीसी के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली मेट्रो से गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षकों को सर्वोच्च सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे भारत को सीखने और नेतृत्व करने में मदद करते हैं। शिक्षक दिवस पर आज एक लेख साझा करते हुए उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना, उनकी जिज्ञासा को जगाना, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना और उनकी तर्क शक्ति तथा निर्णय क्षमता को निखारना शिक्षण के सबसे उपयोगी और फलदायी आयामों में से है। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रेरणा दायक शिक्षा से ही उद्यमियों, वैज्ञानिकों और रचनात्मक कलाकारों की पीढ़ियां तैयार की जा सकती हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉप आउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है।
2: हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्शों को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था। अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को विश्व की कौशल राजधानी के रूप में स्थापित करना और साथ ही ज्ञान शक्ति बनना देश की प्राथमिकता है।
2: चुने गए सुयोग्यों प्रशिक्षकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। देश के विकास में एकेडमिक एक्सेलेंस, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत अधिक महत्व है। भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के साथ साथ स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित करना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता में से शामिल है।
1: राष्ट्रपति ने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा को आगे बढ़ाने में सावित्रीबाई फुले की महत्वपूर्ण भूमिका को भी याद कर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने स्कूली शिक्षा को शिक्षा प्रणाली का आधार बताया।
2: ज्ञान और कौशल तो कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु बचपन में ही सदाचार की शिक्षा देना अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। आरंभिक कक्षाओं में बच्चों के बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास पर निष्ठापूर्वक ध्यान देकर हमारे शिक्षक अच्छे विद्यार्थियों और कर्तव्यनिष्ठा नागरिकों की भावी पीढ़ियां तैयार करते हैं।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षकों का ये दायित्व है कि वे कुछ विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों में आत्मविश्वास जगाएं।
2: कुछ विद्यार्थी गांव के किसी सामान्य स्कूल से शहर के बड़े स्कूल में आते हैं और थोड़ा असहज हो जाते हैं। कुछ विद्यार्थी स्वभाव से ही संकुची होते हैं। कुछ विद्यार्थी में बहुत प्रतिभा होती है, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो किसी कारण से कोई भी कमी महसूस करते हैं, उनमें आत्मविश्वास जगाना और उन्हें आगे बढ़ाना शिक्षकों का विशेष दायित्व होना चाहिए।
1: समारोह में 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के 48 चयनित स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की। ये व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए नियमित मंच प्रदान करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming

0: and sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और नेपाल के बचाव दल का चिली में सुरंग में बचाव अभियान जारी है और सुरंग के भीतर से भारी मलबा पानी तथा कीचड़ हटाया जा रहा है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने आज बताया कि बचाव अभियान को सुगम बनाने के लिए पास के स्याफ रुबेसी से सुरंग के प्रवेश द्वार तक एक पहुंच मार्ग का निर्माण भी चल रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आई। इस आपदा ने उत्तरी और मध्य नेपाल में व्यापक तबाही मचाई जिससे घर, सड़कें, पुल और जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हुई। इस बीच विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज स्वस्थ असहमति और विचार विमर्श की संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ब्रिक्स के सदस्य देशों और सहयोगी देशों के प्रतिनिधि मंडलों को संबोधित किया। एक रिपोर्ट।
4: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उचित न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने याद दिलाया कि नालंदा विश्वविद्यालय एक समय में सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक केंद्र हुआ करता था, जहां विश्व भर के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को बिना किसी भेदभाव या बाधा के प्रवेश दिया जाता था। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को भी जीवंत नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाना चाहिए। मध्यस्थता पर एक सत्र के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मध्यस्थता संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूत करने, पेशेवर प्रशिक्षण, बहुभाषी क्षमता और न्यायाधीशों, मध्यस्थों, वकीलों और व्यवसायों के बीच संवाद को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि संवाद कायम रह सके, व्यापार जारी रह सके और ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच विश्वास बढ़ सके। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
3: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत शिलालेखों और समुद्री व्यापार से लेकर गणित तक अपनी विरासत का अध्ययन करने और उसे दोबारा प्राप्त करने में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। नई दिल्ली में वार्षिक इतिहास पुरस्कार समारोह और डॉ एस एल भैरप्पा स्मृति व्याख्यान में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर है।
5: इंडिया टुडे इज सेल्फ अश्योर्ड।
4: हमने इस मामले में किसी और की अनुमति का इंतजार करना छोड़ दिया है और अब हम अपनी विरासत का अध्ययन खुद कर रहे हैं। हम शिलालेखों को पढ़ रहे हैं, अपने समुद्री व्यापार के इतिहास को समझ रहे हैं और गणित के जरिए कहानियों को पूरी प्रसन्नता और सटीकता के साथ सामने ला रहे हैं।
5: टेलिंग दी स्टोरीज विद रियल प्लेजर।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं।
6: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
8: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुनें।

0: ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के मेलघाट और पेंच बाघ अभयारण्य बंदी प्रजनित गिद्धों के पुनर्वास के लिए भारत के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं, जहां जीवित रहने की उत्साहजनक दर दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने सोमवार तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने आज सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी क्योंग को 21-16, 18-21, 21-11 से हरा दिया। और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 13 ओवर में 7 विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया, वैश्विक अनिश्चितता के बीच 7.8% की GDP वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भावी पीढ़ी के उद्यमियों और वैज्ञानिकों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करने में शिक्षकों की भूमिका पर बल दिया। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reiterates 7.8% GDP growth amid global uncertainty reflects India's economic strength. Addresses SRCC students in New Delhi. President Draupadi Murmu stresses teachers' role in nurturing independent thinkers to create future entrepreneurs and scientists. India and Nepal continue joint operation to rescue people trapped inside hydropowered project tunnels in Nepal hit by flash floods. Melghat and Pinch Tiger reserves in Maharashtra emerge as most successful reintroduction sites for vultures. Heavy rainfall forecast in northern, northeastern states, sub-Himalayan West Bengal, Bihar, East Rajasthan, Delhi and Madhya Pradesh till Monday. And in China Masters Badminton, Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty enter the men's doubles final. Prime Minister Narendra Modi today said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. Addressing the gathering at the centenary celebrations of Shriram College of Commerce, SRCC, in New Delhi, Mr. Modi said the world is watching India become the fastest growing major economy.
2: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने से हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
1: The Prime Minister said SRCC has given generations of students the opportunity to learn, grow and make a difference over the years. Mr. Modi said the college has distinguished itself over the years, making a mark for academic excellence. He termed the alumni of SRCC as very special.

0: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है।
1: व्यक्ति और अन्य जीव जगत का जीवन दुख का दूसरा नाम है। अन्य जीवों के दुख उसकी अपनी परिधि से बाहर होते हैं, परंतु व्यक्ति के अधिकांश दुख उसके अपने ओढ़े हुए होते हैं। ईर्ष्या, क्रोध, भय, कमियां, लालच, लालसा हर जीव के हृदय में स्थायी घर बनाकर रहते हैं। बड़े से बड़ा धनवान भी दुखों के इन मूल कारणों से बच नहीं सका है। कहने को ये सब विकार हैं, पर सांसारिक जीवन के लिए स्वीकार हैं। हर कोई जोगी या जोगिन बन नहीं सकता, पर हाँ, अगर कोई इन पीड़ाओं की साफ बयानी कर दे तो ये दुख कम हो जाते हैं। कहते हैं ना, दुख अगर किसी को बता दिया जाए तो आधा रह जाता है, और अगर उसमें दूसरे का दुख भी शामिल कर लिया जाए तो उसके बदले महज सुख ही नहीं मिलता, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ज्ञानपीठ सरीखे बड़े पुरस्कार भी मिलते हैं। जी हाँ, छायावाद की प्रमुख लेखिका महादेवी वर्मा ने इस जीवन को दुख का सागर बताते हुए उस सत्य को पूरे सबूतों के साथ व्याख्यायित किया है। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही। उमड़ी कल थी, मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। आइए महादेवी वर्मा के सुख दुख के इस संगम को विस्तृत रूप से समझने की चेष्टा करते हैं। वरिष्ठ लेखिका और दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की अध्यक्ष वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर सुधा सिंह से।
2: महादेवी को दुख इतना अन्यतम और प्यारा नहीं था। कह सकते हैं कि महादेवी के जीवन में दुख था, लेकिन दुख के पहले सुख की अनुभूतियां थी, और उन सुखद अनुभूतियों को सामाजिक जीवन में टकराहट की स्थिति में दिखाई देने के कारण महादेवी ने दुख को गले लगाया था, और यह दुख उनका केवल निजी दुख नहीं रह गया था, बल्कि

0: की सार्वभौम दुख था और स्त्री के संदर्भ से देखें तो समस्त स्त्री जाति का दुख था। महादेवी जितनी मुखर गद्य के क्षेत्र में श्रृंखला की कड़ियां नामक पुस्तक में होती हैं और स्त्री के तथा समाज के जीवन पर सामाजिक संरचना पर जिस तरह से टिप्पणी करती हैं, वहां से यह सूत्र प्राप्त किया जा सकता है कि महादेवी की रचनाओं में दुख का जो झीना आवरण है वह किन कारणों से है। क्या वे कारण महादेवी द्वारा स्वयं निर्मित किए हुए थे अथवा समाज की संरचना में ही कहीं न कहीं कोई दोष था और उस दोष के आधार के रूप में वे टिके हुए थे। एक उनकी कविता है और इस पूरी कविता में दुख और दुख की व्याप्ति, साथ ही साथ सुख और सुख की कीमत, यह झीने तौर पर दिखाई देती है। इस कविता में महादेवी अपने जीवन के स्वप्निल संसार में एक युवा किशोरी आंखें खोलती है और उसकी परिणति एक दुखात्मक पृष्ठभूमि में होती है। उस पूरी कहानी को महादेवी ने निजी और सार्वजनिक दोनों स्तर पर साझा किया है। बांच ली मैंने व्यथा की बिन लिखी पाती नयन में, मिट गए पद चिन्ह जिन पर हार छालों ने लिखी थी, खो गए संकल्प जिन पर राख सपनों की बिछी थी। आज जिस आलोक ने सबको मुखर चित्रित किया है, जल उठा वह कौन सा दीपक बिना बाती नयन में। बांच ली मैंने व्यथा की बिन लिखी पाती नयन में। यह कैसी व्यथा थी और किसकी व्यथा थी जिसको बिन लिखे ही महादेवी ने किसी अन्य की आंखों में बांच लिया था। और आगे एक और कविता में कहती हैं, नयन की नीलम तुला पर मोतियों से प्यार तोला, कर रहा व्यापार कब से मृत्यु से यह प्राण भोला, साध हे तुम बन सघनतम सुरंग अब गुंठन उठा गिन आंसुओं की रेख लेते। ये कविता एक तरफ अपने प्रिय को संबोधित है कि साध हे तुम, प्रिय को प्रिय नहीं कह रही, साध कह रही है। साध यानी साधना का संसार यानी इच्छा। महादेवी की कविता में साध, स्वप्न, शून्य, क्षितिज जैसे शब्द बार बार आए हैं और साध की जो कीमत होती है यानी इच्छा रखने की, भाव रखने की, सामाजिक संबंधों के संदर्भ में सहज ही स्त्री के पक्ष से देखा जा सकता है कि वह कीमत कितनी भारी होती है। और महादेवी के लिए वह साध फिर एक सपना बन जाता है, लेकिन उस सपने को लेकर वे आगे बढ़ती हैं और कहती हैं, आंसू का तन विद्युत का मन, प्राणों में वरदानों का प्रण, धीर पदों से छोड़ चले घर, दुख पाथे संभाले। महादेवी ने दुख को अपना पाथे बना लिया और जब वो सुकुमार थी, कोमल थी, उनके भीतर रमणीय भाव था और वे चाहती थी कि उनको सुख मिले जैसे हर स्त्री की इच्छा होती है, और सुख ऐसा ना हो कि अपने सुख से किसी को दुख हो, तो महादेवी इस तरह का सुख चाहती थी। वे साफ कहती हैं, इन ललचाई पलकों पर पहरा था जब व्रीड़ा का, साम्राज्य मुझे दे डाला उस चितवन ने पीड़ा का, उस सोने के सपने को देखे कितने दिन बीते, आंखों के कोश हुए हैं मोती बरसा कर रीते। अब आप देखिए यह जो भाव है कि वह सोने सा सपना कब का था, युवावस्था का, किशोरावस्था का, जब महादेवी सामाजिक संबंधों और संरचनाओं को जो घर के बाहर के समाज में व्याप्त था उसको उस तरह से नहीं समझ पाई थी और तब उन्होंने वह सुनहरा सोने जैसा स्वप्न देखा था, लेकिन उस सोने जैसे सपने को देखे हुए भी युग बीत गए और अब दुख का कोश भी मोती बरसा बरसा कर रीता हुआ है। इस दुख की व्याप्ति हो गई है। यह दुख निजी दुख से अब संसार के दुख के लिए सन्नद्ध कर चुका है और सांसारिक दुखों का एक बड़ा कारण समाज में स्त्री की स्थिति है जिस पर महादेवी की निगाह रही है। क्या अनुनय में मनोहारों में, क्या आंसू में उद्गारों में, आवाहन में अभिसारों में, जब मैंने अपने प्राणों में प्रिय की छांह छिपा ली। मैंने तो अपने प्रिय की छांह को यानी अपने लिए सुख के भाव को अपने भीतर ही समाहित कर लिया है, तो अब क्या अनुनय और क्या मनोहार, क्या आंसू और क्या उद्गार, क्या आवाहन और क्या अभिसार, अब मेरा सुख तो मेरे भीतर है और इसलिए मैं अब जो कुछ कहती हूँ संसार उसके बदले मुझे मतवाली कहता है। और महादेवी ने अपनी एक कविता के बंद में स्वयं को अपने सुने पन की मैं हूँ रानी मतवाली ये कहा है। और एक जगह और कहती हैं, भावे क्या अली अस्थिर मधुदिन, दो दिन का मृदु मधुकर गुंजन, पल भर का यह मधु मद वितरण, चिर वसंत है मेरे इस पतझर की डाली डाली, क्यों जग कहता मतवाली। संसार के लिए तो एक उलाहना है ही, कि तुम मुझे मतवाली क्यों कहते हो, मैंने तो अपने पतझर की डाली डाली को ही वसंत का भाव दे दिया है, इसलिए मैं तो किसी से कुछ मांगती नहीं हूं। मैंने तो अपने कष्ट को अपने लिए स्वयं चुना है और ना मुझे इसके लिए किसी से कोई इच्छा है, न प्रतिदान की अभिलाषा है। तो कहती हैं कि अब मेरे लिए अगर कोई संदेश है तो वो और क्या हो सकता है, अब कहो संदेश है क्या, अब कहो संदेश है क्या, और ज्वाल विशेष है क्या, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश है क्या, एक इंगित के लिए शत बार प्राण मचल चुका है, अब कहो संदेश है क्या और ज्वाल विशेष है क्या। वे कहती हैं कि मेरी कोई इच्छा इस संसार से कुछ प्राप्त करने की नहीं है, जब इच्छा नहीं है तो दुख का कारण नहीं है, आगे कौन सा चंदन चांदनी का देश है जिसका मुझे कोई दर्शन करवा सकता है या प्राप्ति करवा सकता है। तो इसलिए कहती हैं, पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। एक जगह और कहती हैं कि क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव ये मेरा मिटने का अधिकार। ये जो मर्त्य लोक है इसके बंधन से मुक्ति मैं नहीं चाहती, इसके दुखों से मुक्ति मैं नहीं चाहती, क्योंकि जब तक दुख समाप्त नहीं होते महादेवी का कार्यभार भी समाप्त नहीं होता। और ध्यान रखिएगा कि ये दुख महादेवी को क्यों है, ये तब तक पाठक को, श्रोताओं को समझ नहीं आ सकता जब तक वे ना समझें कि महादेवी का यह दुख केवल मनुष्य मात्र होने का दुख नहीं है, देह धरे को दंड नहीं है। महादेवी देह धरने को यानी संसार में आने को दंड नहीं मानती, देह से उन्हें अनुराग है, प्यार है। लेकिन वो कहती हैं, स्मित बनकर नाच रहा है अपना लघु सुख अधरों पर, अभिनय करता पलकों में अपना दुख आंसू बनकर। सुख दुख की कैसी सुंदर अभिव्यक्ति है, इसे हम सहज ही यहाँ देख सकते हैं कि सुख है वह स्मित लाता है चेहरे पर, लेकिन दुख पीछा नहीं छोड़ता, वह भी साथ साथ आता है, वो अभिनय करता है पलकों में अपना दुख आंसू बनकर। इस तरह से सुख दुखात्मक जो भाव है महादेवी के यहाँ, वह युग्म रूप से साथ साथ चलते रहते हैं और कई बार बाइनरी अपोजिशन भी बनाते हैं। जब वे ही शब्द जो सुखात्मक भावों के लिए आते हैं, कहीं कहीं दुखात्मक और बंजर अर्थों को ध्वनित करने लगते हैं, कि मैं दिन को ढूंढ रही हूं, देखिए कितना बड़ा कंट्राडिक्शन है, मैं दिन को ढूंढ रही हूं जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक प्याली में। हीरे के प्याली में सिकता की मांग हो रही है और महादेवी दिन के उजियाले में जुगनू को ढूंढ रही है। दोनों ही विरोधी स्थिति है, विरोधाभासी स्थिति है। और क्यों महादेवी की कविताओं में इस तरह की विरोधाभासी स्थितियों का वर्णन है? दुख स्थायी भाव की तरह दिखाई देता है, लेकिन दरअसल दुख के साथ उसके पृष्ठभूमि में सुख का एक गहरा झीना सोता भी बहता चलता है।
1: वो कहती है, महादेवी तुम क्या लिखती हो, तुम ये सब क्या भूल जलूल बात लिखती हो, सीधे बात देखो, लिखने आती नहीं थी, उस समय भी नहीं आती थी, अब तो उसको शायद एमए पढ़ता विद्यार्थी, लेकिन तब तो 8वें दर्जे में पढ़ने वाले व्यक्ति की रचना थी, परंतु उसमें साफ बात नहीं कही है बस। और फिर उसके बाद थोड़ा दर्शन भी आया और भाव में संयम भी आया, भाषा भी दूसरी ही, निर्जा में जाके गीति का तत्व आ गया मुझे, और मैंने मानो दिशा भी पा ली है। कभी कभी आश्चर्य होता है कि उस समय मैंने कैसे लिखा होगा ये।
0: ये है महादेवी, और महादेवी की कविता में अभिव्यक्त दुख का गागर और सुख का सागर।
2: वरिष्ठ लेखिका और दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की अध्यक्ष वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर सुधा सिंह ने ठीक ही कहा है कि महादेवी वर्मा की कविताएं भले दुख से जन्मी हों, मगर सुख दामन की तरह हरदम साथ चलता रहा और वो दुख नीर बनकर सुख के एक बड़े सागर में विलीन हो गया और साहित्य को संवेदनाओं के अनेक धरातल दे गया। अगर रचनाकार अपनी बात को तमाम हकीकियों से जोड़ते हुए समाज के सामने रखता है तो उसके परिणाम सदियों तक सचेत और आंदोलित करते हैं। दुष्यंत कुमार भी एक ऐसे ही रचनाकार रहे हैं। अपने बोझ से झुक कर दोहरे हो चुके पसीने से तरबतर मेहनत कश इंसान के बेहद बदरंग चेहरे को बेहद खूबसूरती से उभारती उनकी गजलों ने जो बरगद खड़ा किया, उसके साये में धूप का कोई कतरा आज तक कहीं नजर नहीं आता। व्यवस्था के विरुद्ध इस सजग विद्रोह ने ही हिंदी गजल की मजबूत बुनियाद रखी। 27 सितंबर को उनके जन्म दिवस पर उन्हें उन्हीं के स्वर में कहे इस

0: शेर से याद कर सकते हैं।
1: हर सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, हर किसी का पांव घुटनों तक सना।
0: अनेक विवादों के बीच दुष्यंत कुमार ने अपनी भाषा, अपने कहन और अपनी बहर से हिंदी जगत को जो नया आकाश दिया वो बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल है। सुनते हैं एक बातचीत, दुष्यंत कुमार, अपनी बहर, सबकी गजल। प्रतिभागी हैं वरिष्ठ कवि, समीक्षक और प्राध्यापक डॉक्टर शिव नारायण और वरिष्ठ गजलकार और समीक्षक श्री मंगल नसीम।
2: दुष्यंत दोस्तों एक ऐसा नाम है जो हिंदी गजल और उर्दू गजल के बीच में एक पुल बनाता है। उनकी एक किताब है गजल के ऊपर, साये में धूप, जिसमें तकरीबन 54 गजलें संग्रहित हैं और उन्होंने जीवन के हर हिस्से पे लिखा है। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ, या हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ कहें दुष्यंत जी के बारे में।
3: बहुत बहुत आभार आपका मंगल जी, आपने बहुत अच्छी परिचय दिया उनके बारे में। गजल तो मुख्यतः उर्दू फारसी की विधा है
2: जी,
3: लेकिन उस विधा को फॉर्मेट को लेकर हिंदी में उन्होंने जितना काम किया
2: जी,
3: कहना चाहिए कि हिंदी का जो मिजाज था प्रतिरोध, अपने समय के प्रतिरोध को उन्होंने उस गजल से जोड़ दिया
2: जी।
3: और हिंदी में गजल की परंपरा यूं तो बहुत पुरानी रही है
2: जी।
3: जितने बड़े बड़े कवि हुए सबने गजलें कही हैं, वो निराला हो, पुरानी अगर हम चले जाएं तो कबीर तक, यहाँ तक कि जितने प्रगतिशील कवि हुए उन सबने भी गजलें कही। अब शमशेर बहादुर सिंह हो, केदार जी हो, यहाँ तक कि अभी हाल में उनका निधन हुआ रामदरस मिश्र जी, उन्होंने भी गजलों में बहुत काम किया। लेकिन सन 70-75 के बीच दुष्यंत कुमार जब गजल लेकर आए, अच्छा गजलों को उन्होंने अपने जीवन के, एक तो ईश्वर ने यूं ही उनको बहुत कम समय दिया
2: जी,
3: लेकिन अंतिम समय में गजलें वो कह रहे थे
2: जी।
3: और उन्होंने जो समकालीन हिंदी कविता का मिजाज था लगभग उसी मिजाज और तेवर के साथ वो हिंदी गजलों में आए
2: जी।
3: और जैसे वो कहते हैं कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ, एकदम आम फहम भाषा में जिसे एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है, उन्होंने गजलों को उससे जोड़ दिया और जितने शेर कहे, जितनी गजलें उन्होंने कही, उसे लोगों ने अपने समय के साथ जोड़कर देखा, व्यवस्था के खिलाफ देखा, और वह जो उनका प्रतिरोध था वो हिंदी गजल की मुख्य आवाज बन गई।

0: दरअसल क्या है डॉक्टर साहब, गजल का जो लुगती मानी, जो डिक्शनरी,
1: हाँ
0: जो जो
1: बिल्कुल
0: शब्द कोश का मतलब है गजल का, उसमें
1: जी
0: वो
1: जी
0: है औरत से बातचीत करना।
1: वार्त बिल्कुल
0: ठीक
1: बिल्कुल
0: है,
1: गुफ्तगू
0: अब इस बात को भी मैं समझता हूं कि ठीक से नहीं लिया गया। औरत से बातचीत करना, इसका क्या मतलब? तो इसको सपाट रूप से ले लिया गया, और तब के शायरों ने, औरत से बातचीत करना, तेरी जुल्फें बहुत खूबसूरत हैं, तेरी आंखें बड़ी सुंदर हैं, तेरी पाजेब की झंका। लेकिन अब से कोई 25-30 साल पहले से आप हम देखें तो बहुत से कंटेंट उसमें शामिल हुए हैं गजल में जो श्रृंगार से अलग हैं।
1: ये आपने बहुत अच्छी बात कही नसीम जी। और जितने बड़े बड़े शायर, हालांकि तरक्की पसंद

0: शायरों की कमी नहीं है
1: जी
0: जिन्होंने मजदूरों की जबान को जो है और लोगों की जबान को भी जो है गजलों में लाया
1: जी
0: लेकिन उर्दू गजल जो है वो पर्याय हो गया मोहब्बत के गुफ्तगू के लिए श्रृंगार के लिए वो लेकिन श्रृंगार तो संयोग पक्ष भी होता है वियोग पक्ष भी होता है
1: जी बिल्कुल
0: पर दुष्यंत जिस समय हुए वो उबाल का समय था
1: जी बिल्कुल
0: लोग संतरस्त थे उस समय एक व्यवस्था से
1: व्यवस्था
0: और उसमें वो कोई परिवर्तन चाहते थे
1: जी
0: इसलिए जब मतलब दुष्यंत कहते हैं उस समय वो अब तो इस तालाब का पानी बदल दो ये कमल के फूल कुमलाने लगे हैं तो लोगों ने ऐसे नाजुक शेरों को भी जो है व्यवस्था परिवर्तन से जोड़ कर देखा और बहुत सारे लोग प्रतिरोध का अर्थ विरोध समझते हैं
1: जी।
0: पर प्रतिरोध का जो वास्तविक अर्थ होता है वह होता है अपनी बातों को कह लेने की जिद
1: जी।
0: ऐसा लगता है कि उनकी गजलों को पढ़ते हुए कि वक्त ने उनको अपने लिए जो है चुना कि तुम शेर कहो तुम गजलें हमारे लिए कहो और जो परिस्थितियां थी उसको उन्होंने आम आदमी के जबान पर ला दिया
1: जो एक रक्षा वाला भी समझता
0: रक्षा वाला भी समझ सकता
1: और एक प्रोफेसर भी समझता
0: एक प्रोफेसर भी समझ सकता
1: ये समझिए कि उनके जो प्रतीक और इस्तारे थे वो भी अलग थे तू किसी रेल सी गुजरती है
0: हाँ,
1: मैं किसी पुल से थर थर अपने आप को पहचानना और दूसरे को और समझ के उसको शेर में ढालना।

0: देखिए, ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि दुष्यंत के व्यक्तित्व, शायराना व्यक्तित्व का जो गठन है वो परिमल से हुआ।
1: जी
0: इलाहाबाद में उन्होंने पढ़ाई की थी और वो रहने वाले थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। तो ये जो टोन है उनके कहन कौशल का, ये इन दोनों जगहों का प्रभाव उस पर दिखाई पड़ता है।
1: जी जी
2: दुष्यंत कुमार जन्मे भले राजपुर नवादा बिजनौर में हो, शिक्षा इलाहाबाद में प्राप्त की हो और कार्य क्षेत्र आकाशवाणी दिल्ली और भोपाल रहा हो, पर उनकी भाषा में समूचे भारत की महक है। उनकी गजल का माध्यम भले हिंदी रहा हो, मगर उर्दू जगत को भी उनकी भाषा अपनी सी लगी और खड़ी बोली वालों को भी। कुछ शब्द उन्होंने अपने भी गढ़े जो मुहावरे बनकर आज हिंदी के परचम को पूरी जगत में लहरा रहे हैं। हिंदी भाषा को आगे लाने में साहित्यकारों का ये योगदान सोने के अक्षरों में लिखा हुआ है। सुनते हैं एक वार्ता, हिंदी भाषा राजकाज से कामकाज तक। वार्ताकार हैं भाषा विशेषज्ञ डॉक्टर गणेश शंकर श्रीवास्तव।
3: किसी भी साहित्य के विकास में भाव, संवेदना, कथ्य और शिल्प, इन सबसे अधिक भाषा का योगदान रहता है। वह भाषा मातृभाषा भी हो सकती है और अनुवादित भी हो सकती है। अपनी भाषा के दर्द, पीड़ा, संवेदना और पक्ष ज्यादा हितकर इसलिए माने जाते हैं। आज भारतेंदु, निराला, प्रेमचंद, महादेवी, पंत, जयशंकर प्रसाद, बच्चन आदि की बदौलत हिंदी भाषा वैश्विक स्तर पर मान सम्मान को प्राप्त कर पा रही है और लगभग 145 देशों में अध्ययन अध्यापन का माध्यम बनी हुई है। साल का सितंबर महीना अस्तित्व में है और सरकारी महकमों में फाइलें हिंदी में रंगे जाने की कवायद जारी है। हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत सरकार और उसके अधीन संगठनों में हिंदी की कई वर्कशॉप आयोजित कर प्रतिभागियों को सरल हिंदी का सरकारी कामकाज में प्रयोग कैसे करें के गुर सिखाए जा रहे हैं। सीख तो लोग रहे ही हैं और हर साल सीखते हैं, लेकिन सवाल यह है कि उनका प्रयोग वर्ष पर्यंत करते हैं अथवा हिंदी पखवाड़े या सितंबर माह तक ही यह जागरूकता रहती है। गौरतलब है कि हमारा कानून सरकारी दफ्तरों में हिंदी के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संगठन के चीफ या उच्चाधिकारी को सौंपता है। साथ ही राजभाषा से संबंधित कार्यों में सहयोग, मार्गदर्शन एवं मॉनिटरिंग के लिए राजभाषा अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। यदि इस ढांचे पर हम गौर फरमाएं तो पाते हैं कि हिंदी को लागू करने के लिए दो स्तरों पर प्रतिबद्धता अनिवार्य है। पहला वह जो राजभाषा क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है, यानी कि संगठन का प्रमुख उच्चाधिकारी या मुख्य प्रबंधक इत्यादि, और दूसरे वे जिन्हें हम मुख्य रूप से हिंदी ऑफिसर या हिंदी के अन्य पदाधिकारियों के रूप में जानते हैं। एक तीसरा पक्ष उन कार्मिकों का है जो व्यवहारिक रूप से हिंदी का कार्य करते हैं। यदि सरकारी कार्यालयों की व्यवहारिक स्थितियों का अवलोकन करें तो यह तथ्य निकल कर आता है कि जहां उच्चाधिकारी या संगठन के प्रमुख के रूप में हिंदी के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी का प्रश्न है, वहां हमें उस संस्थान के प्रमुख की व्यक्तिगत अभिरुचियों और मिजाज की ओर ताकना पड़ता है। यदि संगठन का प्रमुख हिंदी भाषा के प्रति कुछ रचनात्मक लगाव रखता है तो वह इसके लिए प्रयास करता है, अन्यथा अधिकतर का रुख हिंदी के प्रति उपेक्षित ही रहता है। दुर्भाग्य की स्थिति तो तब बनती है जब ऐसे पदों पर हिंदी भाषी क्षेत्रों के ही लोग आसीन होते हैं।

0: विभाग द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों पर गढ़ी रहती है। हमें यह मानना होगा कि हिंदी का विकास तब तक नहीं होगा जब तक हम उसकी सेवा निस्वार्थ रूप से अपना पुनीत कर्तव्य समझकर न करें। यह समझना आवश्यक है कि राजभाषा हिंदी का प्रयोग केवल हिंदी अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक सरकारी अधिकारी और कर्मचारी का दायित्व है। यह भी देखना होगा कि हिंदी अधिकारियों को भी केवल अनुवाद की भूमिका तक सीमित न रखकर प्रशासनिक एवं राजभाषा संबंधी कार्यों में पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए। हिंदी कार्यशालाएं भी केवल औपचारिकता न बने बल्कि नोट शीट, पत्र, टिप्पणियां और कार्यालयी आदेश सरल एवं स्पष्ट हिंदी में तैयार करने का व्यवहारिक प्रशिक्षण दें। साथ ही सरकारी हिंदी को कठिन और कृत्रिम बनाने के बजाय सरल, सहज एवं प्रचलित हिंदी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यह भी प्रायः देखा गया है कि हम अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते हैं जबकि आवश्यकता इस बात की है कि जो भी नीतिगत दस्तावेज बने वो मूलतः हिंदी में बने और बाद में उनका अंग्रेजी में अनुवाद हो, तब निश्चित रूप से राजभाषा हिंदी के स्वर्णिम दिन प्रारंभ होंगे। अंततः हिंदी के प्रयोग को अतिरिक्त बोझ या दंडात्मक व्यवस्था के रूप में नहीं बल्कि सहज और जनोन्मुख प्रशासन के माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए। जब वरिष्ठ अधिकारी नेतृत्व करेंगे, हिंदी अधिकारी प्रभावी मार्गदर्शन देंगे और प्रत्येक कर्मचारी इसे अपनी जिम्मेदारी समझेगा, तभी राजभाषा का वास्तविक और प्रभावी क्रियान्वयन संभव होगा। हिंदी के राजकीय प्रयोग की दृष्टि से कार्य क्षेत्र स्वाभाविक रूप से सबसे मजबूत आधार प्रस्तुत करता है। इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। वहीं खा क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब तथा चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप शामिल हैं। वर्ष 2024-25 के वार्षिक कार्यक्रम में खा क्षेत्र से हिंदी में मूल पत्राचार के लिए अत्यंत ऊंचे लक्ष्य निर्धारित किए गए। खा से खा क्षेत्र में 100%, खा क्षेत्र को 100% तथा गा क्षेत्र को 100% तक हिंदी में पत्राचार का लक्ष्य रखा गया। खा क्षेत्र के लिए भी खा क्षेत्र को 90% और गा क्षेत्र को 90% हिंदी पत्राचार का लक्ष्य निर्धारित था। हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में देने का लक्ष्य दोनों क्षेत्रों के लिए 100% तथा हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य खा क्षेत्र में 75% और खा क्षेत्र में 50% था। हिंदी के राजकीय प्रयोग की तस्वीर को केवल का और खा क्षेत्रों की उपलब्धियों से नहीं आंका जा सकता। गा क्षेत्र में भी हिंदी का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। राजभाषा विभाग के उपलब्ध सरकारी आंकड़ों में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के गा क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार का प्रतिशत कहीं 20-30% के आसपास है तो कहीं 40-50% से ऊपर और कुछ मामलों में 60-70% से भी अधिक दर्ज किया गया है। उदाहरण के लिए विभिन्न मंत्रालयों के आंकड़ों में गा क्षेत्र में हिंदी पत्राचार 62%, 69% और 77% तक दर्ज हुआ है। यह स्थिति बताती है कि गा क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग अब केवल प्रतीकात्मक नहीं रह गया है, यह अनेक कार्यालयों में हिंदी पत्राचार, टिप्पण और अन्य कार्यालयीन कार्यों में उसका प्रयोग हो रहा है। फिर भी गा क्षेत्र में एकरूपता नहीं है, कहीं हिंदी का प्रयोग अपेक्षाकृत मजबूत है तो कहीं अभी अंग्रेजी का वर्चस्व अधिक है। इसलिए हिंदी को राजभाषा से कामकाज की भाषा बनाने की अगली महत्वपूर्ण चुनौती गा क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग को और व्यापक, सहज तथा नियमित बनाना है। यह आवश्यक है कि राजभाषा के प्रति हम सिर्फ एक औपचारिक दृष्टिकोण न रखते हुए अपितु उसे अपना कर्तव्य बोध मानकर उसके क्रियान्वयन का प्रयास अपने कार्यालयों में करें तो निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं जब वास्तविक रूप से राजभाषा हिंदी हमारे सरकारी कामकाज में 100% रूप से व्यवहारिक धरातल पर उतर आएगी।
1: अगर अपनी भाषा है तो संस्कृति भी अपनी होगी, संस्कार भी अपने होंगे, दोस्त भी अपने होंगे, समाज भी अपना होगा और देश तो सदा अपना रहेगा ही रहेगा, अखंड और हर दृष्टि से मजबूत भी होगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी कहा था, हिंदी भाषा देश की संस्कृति, एकता और भावनाओं को आपस में जोड़ने का सबसे बड़ा माध्यम है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शमसुर रहमान फारूकी, विष्णु खरे और बाल शौरी रेड्डी आदि सभी ने अपने साहित्य से अपनी भाषा और संस्कृति के विकास में अमिट योगदान दिया। इन सब को नमन करते हुए आपसे यहीं

0: ये आकाशवाणी है। आज रात्रि के राष्ट्र संगीत कार्यक्रम में हम आपको विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू द्वारा प्रस्तुत मृदंग लय विन्यासम सुनवा रहे हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू ए मृदंगम लय विन्यासम बाय विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू।
0: विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू आकाशवाणी हैदराबाद के प्रतिष्ठित टॉप ग्रेड मृदंगम कलाकार हैं। वे अपनी उत्कृष्ट कला और संगीत के प्रति गहरी संवेदनशीलता के लिए जाने जाते हैं। वे महान मृदंगम वादक एवं आंध्रमणि की उपाधि से सम्मानित स्वर्गीय श्री वाराणसी घंटया शास्त्री के पौत्र हैं। उन्होंने ये कला अपने पिता प्रसिद्ध मृदंगम विद्वान स्वर्गीय श्री वाराणसी वेंकटा सुब्बारामा शास्त्री से सीखी, जो आकाशवाणी हैदराबाद से रिटायर्ड हुए थे। आकाशवाणी हैदराबाद में 3 दशकों से अधिक समय तक समर्पित सेवा प्रदान करते हुए उन्होंने अनेक प्रसिद्ध संगीतज्ञों के साथ संगत की है और भारतीय शास्त्रीय संगीत को समृद्ध किया है। आकाशवाणी हैदराबाद में 3 दशकों से अधिक समय तक समर्पित सेवा प्रदान करते हुए उन्होंने अनेक प्रसिद्ध संगीतज्ञों के साथ संगत की है और भारतीय शास्त्रीय संगीत को समृद्ध किया है। उनकी वादन शैली में शुद्धता, मधुर नाद, संयम और गहरी लयात्मक संवेदनशीलता का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू को उनकी उत्कृष्ट संगीत साधना और विशिष्ट वादन शैली के लिए मृदंग सौख्य भास्कर तथा मृदंग कोमल वाधमणि जैसी प्रतिष्ठित उपाधियों से सम्मानित किया गया है। अपने मधुर, सहज और भावपूर्ण मृदंगम वादन के कारण श्री काली प्रसाद बाबू को स्नेहपूर्वक द विस्पर ऑफ द मृदंगम और मेलेडिक परक्यूशनिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। वे गौरवशाली वाराणसी संगीत परंपरा के एक योग संवाहक हैं और दक्षिण भारतीय मृदंगम वादन की समृद्ध परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज रात्रि के इस मृदंगम वादन के कार्यक्रम में आपके साथ संगत करने वाली कलाकार हैं वायलिन पर सुश्री वीएसपी गायत्री शिवानी।
1: विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू इज एन एमिनेंट टॉप ग्रेड मृदंगम आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी हैदराबाद, नोन फॉर हिज एक्सेप्शनल आर्टिस्ट्री एंड म्यूजिकल सेंसिटिविटी। He is the grandson of the late Sri Varanasi Gantaya Shastri, the legendary Mridangam exponent honored with the title Andhramani. He mastered his art under his father, a renowned Mridangam Vidwan, late Sri Varanasi Venkata Subrama Shastri, who retired from Akashvani Hyderabad. With more than 3 decades of dedicated service in Akashvani Hyderabad, he has accompanied numerous eminent musicians and enriched Indian classical music. His artistry is distinguished by precision, tonal beauty, restraint, and profound rhythmic sensitivity. He has been honored with the prestigious titles Mridanga Saukhya Bhaskara and Mridanga Komala Vadyamani. Affectionately known as the Whisper of the Mridangam and Melodic Percussionist, he is celebrated for his soft, soulful, and graceful strokes. A proud torchbearer of the illustrious Varanasi musical lineage, he represents the rich South Indian Mridangam tradition. In tonight's broadcast, Vidwan Varanasi Kali Prasad Babu is supported on violin by VSP Gayatri Shivani.
0: Vidwan Shri Varanasi Kali Prasad Babu apne Mridangam Lay Vinyas ka aarambh Chaturashtra Jati Triput Tal se kar rahe hain.
1: Vidwan Varanasi Kali Prasad Babu begins his Mridanga Lay Vinyasam with Chaturashtra Jati Triput Talam.

0: विद्वान श्री वाराणसी काली प्रसाद बाबू अपने मृतंगम लय विन्यास का समापन मिश्र चापू ताल से कर रहे हैं।
1: विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू कंक्लूड्स हिज मृदंग लय विन्यासम विद मिश्र चापू तालम।

0: इसी के साथ आज के इस राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू द्वारा मृदंग लय विन्यासम अब संपन्न होता है। उनके साथ वायलिन पर संगत कर रही थी सुश्री वीएसपी गायत्री शिवानी। ये राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आपके लिए प्रस्तुत किया गया।
1: With that, we conclude the Mridanga Lai Vinyasam by Vidwan Sri Varanasi Kali Prasad Babu in the broadcast of National Program of Music. He was supported on violin by VSP Gayatri Shivani. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for National Program of Music and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.
2: अब प्रस्तुत है संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में विठल कुमार राजपुरा का पखावज वादन। इंदौर की सांगीतिक माटी से जुड़े और प्रतिष्ठित नाना साहब पांसे घराने के होनहार पखावज वादक श्री विठल कुमार राजपुरा जी आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं। श्री राजपुरा जी ने पखावज वादन की गहन शिक्षा आकाशवाणी के ही टॉप ग्रेड कलाकार पंडित गोस्वामी श्री देवकी नंदन जी महाराज से प्राप्त की है। विठल जी की वादन शैली की सबसे बड़ी खूबी है उनके बोलों की स्पष्टता, तैयारी और छवि पढ़नों का अलौकिक वादन जो सीधे रसिकों के दिल में उतर जाता है। राष्ट्रीय युवा उत्सव में स्वर्ण पदक विजेता, कल के कलाकार और निर्माण प्रतिभा अवार्ड जैसे कई सम्मानों से अलंकृत विठल जी ने देश के प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का जादू बिखेरा है। तानसेन समारोह के गमक उत्सव, कालिदास समारोह और चक्रधर संगीत समारोह जैसे अनेक राष्ट्रीय आयोजन में विठल जी ने अपने एकल वादन और जुगलबंदी से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया है। श्री विठल कुमार राजपुरा आज के कार्यक्रम में पखावज पर झपताल प्रस्तुत कर रहे हैं। आपके साथ सारंगी पर लहरा दे रहे हैं श्री जगदीश बारोट।
3: In the National Program of Music, we now present a Pakhavaj recital by Shri Vithal Kumar Rajpura. Deeply rooted in the musical soil of Indore, the promising Pakhavaj maestro of the prestigious Nana Saheb Panse Gharana, Shri Vithal Kumar Rajpura is an A-grade artist of Akashwani. Shri Rajpura has received rigorous training in Pakhavaj from the top-grade artist of Akashwani, Pandit Goswami Shri Devki Nandanji Maharaj. The hallmark of Vithalji's playing style is the absolute clarity of his syllables, his swift readiness, and the divine rendition of Chabi Parno, which deeply touches the heart of music connoisseurs. A gold medalist at the National Youth Festival and adorned with honors such as Kalki Kalakar and the Nimad Pratibha Award, Vithalji has spread the magic

यमुना के तट मंद मंद गति चली जात वर्षपान दुराले लचकत तिरकत चलत पांक चितवन अति प्यारी चंद्र चमक चपलासे चमकत चंद्र मुखी राधा राधा राधा यमुना के तट मंद मंद गति चली जा वृषपान दुराले लचकत तिरकत चलत पांक चितवन अति प्यारी चंद्र चमक चपलासे चमकत चंद्र मुखी राधा राधा राधा यमुना के तट मंद मंद गति चली जात वृषपान दुराले लचकत थिरकत चलत बांक चितवन अति प्यारी चंद्र चमक चपलासी चमकत चंद्र मुखी राधा।

0: जन स्पॉन्सर करायचं, तिसऱ्यानं मंगलाष्टक, चौथ्यानं लाजा होम, पाचव्यानं सप्तपदी, असं आपण सगळं लग्न स्पॉन्सर करायचं.
1: एकदम
2: एक शादी में पाचशे हिस्से करके एक एक हिस्सा स्पॉन्सर करने का अच्छी आइडिया है. मेरे धंधे की यू एडवर्टाइजमेंट भी ऐसी करूंगा, देखते रहे
1: करून भाई. मी भी माझ्या धंद्याची अशी नुसती एकदम या जंक्शन जाहिरात करतो बघा.
2: मगनलाल शादी स्पॉन्सर करने की आयडिया वंडरफुल है.

0: अरे कसला थरथराट हो डॉन आणि उडी उडाणा डॉन।
1: डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है।

खामोश जली को आग कहते हैं, बुझे को राग कहते हैं, जिस राग से बारूद बनती है उसी को लक्ष्मीकांत कहते हैं।

अरे टकले की खोपड़ी टूटने की आवाज सुनी तुम लोगों ने? अरे अभी तो लक्ष्य का एक हाथ गया रे, लक्ष्य का दोनों हाथ दोनों पैर भी गया ना, लक्ष्य किसी के सामने झुकेगा नहीं, क्या समझे? नहीं समझे, चल फो

0: बंद कर तू जरा गाणं, जरा दाखव की हंगामा।
1: हंगामा जय हंगामा, कहा गई मेरी गंगम्मा, टकले से घाबर गई क्या, आ दिखाता हूं तुझे हंगामा।

0: मत गंगू,
1: ये तो दुनिया की रीत है।
0: अरे ये दुनिया वाले ना तो खुद चैन से जीते हैं, ना दूसरों को चैन से जीने देते हैं। आई हेट टीयर्स गंगू, इन आंसुओं को पोछ दो, ये बहुत कीमती है रे।